0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम,
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं।

0: उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
0: सजा किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है, ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूँ, अगर मैं जो कहता हूँ, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूँ, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की, और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो, ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल,
0: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था। लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था, वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे।
1: बिल्कुल इम्पोर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
0: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना, और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
0: यस,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं, और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, सो जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले

0: था वो एक साथ किया
1: तेंदुलकर वाला,
0: तेंदुलकर वाला, और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
1: ये बहुत बड़ी बात बहुत मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
0: काम नहीं। उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व्ड थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और निरू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर, तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। सो ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
1: विरोध करेगा,
0: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
1: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
0: करेक्ट। सो पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
1: गजब।
0: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
1: वो आराम से बेच सकते थे, पैसे ले सकते थे। हाँ,
0: बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले

0: हुआ करते थे, जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे माड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे
1: आज
0: उस
1: भी
0: वक्त,
1: मौजूद है।
0: आज भी मौजूद है, और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये वो, मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया, कि वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ मैं करता हूँ, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल,
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये
1: बिल्कुल
0: मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन है।
0: ट्रेडिशन है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे, जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दम सांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे
1: कमजोर होती गई।
0: कमजोर होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे, आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते अगर
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे, और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है, इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रांग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू।
0: जुझारू एक्चुअली, और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है,

0: बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रांग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: जुझारू एक्चुअली, और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है, तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते. और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब. और मैं क्या कहूँ, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है. तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो. ओके, या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूँ मैं. तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने, उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे.
1: ये होना ही नहीं चाहिए,
0: हाँ,
1: कोई भी रीजन हो, नहीं
0: और
1: होना चाहिए।
0: नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे. ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन, ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री,
1: राइट।
0: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे
1: देखिए,
0: हो?
1: समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं, तो
0: एग्जैक्टली,
1: इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए
0: बहुत
1: और
0: बहुत
1: लोगों को
0: जरूरी
1: अपनी
0: है,
1: प्राइवेसी में छोड़
0: छोड़
1: देना
0: देना
1: चाहिए
0: चाहिए,
1: ऐसे समय पर।
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे. तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा. तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी और वो लाइन रुक ही नहीं रही थी. अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस, अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था. तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए थे।
0: दूर दूर से आए थे. और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे. राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहाँ कहाँ से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस. ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त, और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे, ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो, कोई ना कोई वो याद निकालता ही है. और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने.
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं, वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे. तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं, और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो. तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे, वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे.
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे?
0: और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वॉज सो मच मोर. तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखे, उसके कई मायने हैं, और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को. तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे.
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए, तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी.
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है, हमारा, अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इसलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: यहाँ एक गाना

0: रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था, तो 40-50

0: 50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे। हमारा खेत भी था, उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
0: सब कुछ होता था सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन ले?
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
0: हाँ, और उसके बोल है मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए है, महाराष्ट्र को दिए है। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं, नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी।
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
1: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
0: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर

0: हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे

0: में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
0: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले, एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त 1 साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, ले
1: लेकिन
0: लो।
1: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी।

0: सदाशिव जी की आवाज। देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं। और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूँ कि ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूँगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, आपके कोई मीम हो या कोई रील हो कि एक ऊर्जा

0: मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने
1: क्या
0: बहुत
1: बात
0: झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ,
1: है।
0: काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग-अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
1: क्या बात है रीमा जी। पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था। जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
0: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोकले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, और तब जाके मैंने राशोमान देखी अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म, ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। आई सेड मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गए कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की, और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन, जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था, वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझ में भी है। तो मैं एनजीओ के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था। तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना, कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं। पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन, किस्से, घटनाएं और पापा, उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही, मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू सो
1: शुक्रिया।
0: मच।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए जगजीत सिंह की गाई ये गजल, जिसे लिखा है निदा फाजली ने।

दुनियादारी। इस फिल्म का गीत अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। विश्वेश्वर शर्मा ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत।

अनुराधा पौडवाल और तलत अजीज की आवाजों में सुनिए इब्राहिम अश्क का लिखा ये गीत। राजेश रोशन का संगीत है, एल्बम का नाम बहार आने तक।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं अशोक खोसला की गाई ये गजल, जिसे लिखा है डॉक्टर राही मासूम रजा ने, जगजीत सिंह का संगीत।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में सुनिए कमर जलालाबादी की ये गजल। धुन बनाई है जगजीत सिंह ने।

एक हमारे दोस्त थे लंदन में रहे, ऐसे बहुत पैसे आ गए उनके पास, जैसे फेंक गए ना अभी, तो वो पंजाब जब वापस गए 15-20 साल के बाद, वहाँ उन्होंने बंगला बनाया और उसकी जो हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी उन्होंने बुलाया सब दोस्तों को, बोले देखिए हमारा ड्राइंग रूम है, ये बच्चों का रूम है, ये किचन है, ये वो है, सब करके बड़ा अच्छा बंगला था। फिर पीछे लॉन में ले गए तो वहाँ 3 स्विमिंग पूल बना रखे हैं, तो एक में गर्म पानी, तो वो समझ आ गई बात सर्दियों में नहाने के लिए, एक में ठंडा पानी तो वो गर्मी में नहाने के लिए, तो एक खाली पड़ा हुआ है। तो उनको पूछा भी ये खाली क्यों पड़ा है स्विमिंग पूल, बोले बात यह कि कभी कभी नहाने को दिल नहीं करता है। कई वैसे पंजाबी में कई ऐसे जोक हैं जो जिनका कुछ मतलब नहीं है लेकिन हंसी आती है, जैसे मैं जगजीत सिंह हूं, ये सुरेंद्र सिंह है, अभी हंसने वाली बात नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी अपने घोड़े पे आ रहे हैं और जगजीत सिंह जी पूछते हैं उनको, सुरेंद्र सिंह जी थोड़ा घोड़ा किथे है? तो सुरेंद्र सिंह कहता भी घोड़े पे तो मैं बैठा हूं, तुमको दिखता नहीं? कहता फिर भी पूछने से की हर जाएगा।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में अभी आपने सुनी ये गजल राणा अकबर बदी का ये रचना थी।
1: फिर मेरे दिल पे किसी दर्द ने करवट ली है, फिर तेरी याद के मौसम की घटा छाई है।

बेवफा तू है कभी।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और

अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देशभर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सीमा फिल्म का गीत। मन्नाडी की आवाज में शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ब्रेक पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था फिल्म अखियों के झरोखों से, हेमलता की आवाज और गीत संगीत था रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में अमृत फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म रजिया सुल्तान से। जानिसार अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं, खयाम का संगीत।

अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।

0: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
1: जी.
0: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है.
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर. तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से. लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम पर्वत, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में. बोल हैं जानिसार अख्तर के, धुन बनाई है जयदेव ने.

और आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। गीत गाता चल इस फिल्म से आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजें हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, हम जानते हैं आपको इंतजार होता है इस कार्यक्रम का, ताकि आप भी हमसे जुड़ सकें, शामिल हो सकें इस कार्यक्रम में और अपनी टिप्पणियों के जरिए अपने दिल की बातें साझा कर सकें। तो आइए आज की इबारत की ओर आपको लेके चलते हैं। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि हम एक इबारत पढ़ते हैं और उस इबारत को लेकर उस इबारत में से आपको कुछ शब्द चुनने होते हैं। तो चलिए, जो साथी फेसबुक पर जुड़ चुके हैं वो तो ठीक ही है, वहां पर कमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन यदि कोई साथी नहीं जुड़ पाए हैं तो आपके लिए एक बार हम ये आज की इबारत पढ़ देते हैं और आपको इस इबारत में से शब्दों को चुनना है और बताना है कि आज कौन से गीत और किन शब्दों के गीत हो सकते हैं। आज की इबारत है, जीवन की ज्योति तब तक उजली रहती है जब तक संवेदनाओं की पुकार सुनाई दे। चंदन की तरह शीतल रहकर किसी के साथ की कीमत को समझना ही सागर जैसी गहरी सोच की निशानी है। झूठ क्षण भर का सहारा दे सकता है, लेकिन मन को सच्ची शांति नहीं देता। दिल हमेशा ही गैरों में अपनापन ढूंढता है। कुछ तस्वीरें सिर्फ यादों में जीवित रह जाती हैं, और फिर रूह की वो जलन, काया की हर तपन इंसान को पहले से और अधिक मजबूत बना जाती है। तो इस इबारत को आपने सुन ही लिया है, आपको बताना है कि आज के शब्द कौन से हो सकते हैं। चलिए पहले गीत की ओर हम बढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको एक हमारे साथी ने लिखी हुई बात बताते हैं। एक साथी ने लिखा है, पूरी इबारत को एक भाव में देखा जाए तो इसका संदेश है कि जीवन में सच्चाई, संवेदनशीलता, रिश्तों की अहमियत और संघर्षों से मिली मजबूती ही इंसान को परिपक्व बनाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि यही चीजें हैं जो इंसान को और निखरने में और परिपक्व बनने में और मजबूत बनने में सहायक होती हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले गीत की ओर। भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर की आवाज, नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा है, सुधीर फड़के का संगीत।

जी हाँ, तो आप में से कई साथियों ने बिल्कुल ये गीत सही पहचाना था और ये शब्द था ज्योति। एक साथी ने लिखा है कि सच कहूं तो सुरीला सफर इस कार्यक्रम की वजह से हमारी बातचीत भी एक प्यारे सफर जैसी बन गई है। हर दिन कोई नया शब्द, कोई पुराना गीत, कोई मीठी याद और कुछ दिल से निकली बातें, यही इसकी सबसे सुंदर बात है। हम सब श्रोता मिलकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, एक परिवार की तरह से बैठकर अपनी बातें कहते हैं, उससे ही तो इसकी खूबसूरती है। और साथ में जो गीत बजते हैं वो सबसे प्यारा साथ होता है होस्ट का। जी हाँ, जब हम और आप इस तरह साथ होते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आपकी टिप्पणियां पढ़कर, और लगता है कि हाँ, हमारी बात सुनने वाला भी उतने ही रुचि के साथ हमसे बात कर रहा है। एक साथी ने लिखा है, हमारी इबारत पे से इन्होंने लिखा है, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी नहीं टूटता। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देते हैं और संबंधों को गरिमा देते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है, जब संवेदनाओं की बात हो रही है तो आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी याद को साझा कर सकते हैं जब आपने अपनी संवेदनाओं को पूरे हृदय से महसूस किया हो। और तब तक आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, फिल्म खामोशी से। हेमंत कुमार के ने इस गीत को गाया है, गुलजार के बोल हैं और हेमंत कुमार का संगीत।

हाँ तो भाई, किसी ने लिखा था कि पूरा गाना आखिरी तक बजाना विसिल के साथ, विसिल के तक। तो लीजिए, आपने जैसा कहा था, पूरा विसिल तक आपको गाना सुनवाया है। एक साथी ने लिखा है, जीवन में कुछ तस्वीरें समय के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ती, वे यादें यादों की दीवार पर हमेशा टंगी रहती हैं। कुछ बिगड़ने, कुछ अधूरे सपने और कुछ अनकहे एहसास मन को तपाते हैं, लेकिन यही तपन इंसान को अंदर से मजबूत भी बनाती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती हैं। एक साथी ने लिखा है, ये इबारत केवल जीवन का चिंतन नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन की उस मौन यात्रा का सजीव चित्रण है, जहां संवेदनाएं ही जीवन का वास्तविक आलोक बनकर मार्ग प्रशस्त करती हैं। संबंधों का सौंदर्य अधिकार में नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और निस्वार्थ समर्पण में निहित होता है। जीवन में बिछड़ना, टूटना, छल और विरह जितने भी कठोर अनुभव हो, यदि वे मनुष्य की संवेदनशीलता को जीवित रखें तो वही उसके व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। स्मृतियां समय के साथ धूमिल नहीं होती, वे आत्मा की धरोहर बनकर हमें भीतर से परिपक्व करती रहती हैं। अंततः जीवन की सबसे बड़ी विजय परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने भीतर की करुणा, सत्य और प्रेम को अक्षुण्ण बनाए रखने में है। जी हाँ, और जो पिछला गीत था उसका शब्द था पुकार, और आप में से कई श्रोताओं ने इसे सही भी पहचाना। लीजिए, अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं। सरस्वती चंद्र फिल्म से मुकेश की आवाज में इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

चंदन शब्द था इस गीत से और हमारे एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं सदैव स्वभाव पर हावी होती हैं, कितने भी मन को कड़ा करें। बच्चे जब दूर कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, सब्र का बांध टूट ही जाता है। जी हाँ, इस बात को हर वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता है जो किसी काम के चलते या फिर किसी मजबूरी के चलते अपने परिवार से दूर जा रहा है। और जब व्यक्ति दूर जा रहा होता है तो जाने वाले को लगता है उसका गम बड़ा है, और जो घर पे अकेला रह जाता है उसे लगता है उसका दुख बड़ा है। लेकिन सच मानिए, दोनों अपनी अपनी स्थिति में अपनी अपनी जगह पर बड़ा दुख झेल रहे होते हैं जब वो एक दूसरे से बिछड़ रहे होते हैं। एक साथी ने लिखा है, आज कुछ खास किस्म के गाने बज रहे हैं, अच्छा लग रहा है। संबंधों की पड़ताल करते ये गीत अमर हैं, इन्हें सुनते बड़ा सुकून मिलता है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, गीत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म मेरा साया से, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खान के बोल, मदन मोहन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, सचमुच ही मनुष्य का वक्त गुजर जाता है, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ लम्हे याद रह जाते हैं, कुछ सुकून रह जाते हैं, कुछ संवेदनशीलता होती है जो कि उम्र भर जीने की राह सिखाती है। कभी कभी उन यादों के सहारे भी रोना पड़ता है जो बीत गए हैं। उन पुरानी यादों के गलियारों से रूबरू कराती है विविध भारती परिवार। सुरीला सफर सचमुच विविध भारती का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विविध भारती परिवार सुख दुख की बातें और जीने की राह सिखाती है। विविध भारती को कोटि कोटि धन्यवाद, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिखते हैं, दूसरों के दुख को समझना, महसूस करना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना और करुणा रखना, यही संवेदनशीलता व्यक्ति की पहचान है। संवेदना समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे को बढ़ाती है। यही एक स्वस्थ समाज की नींव है। जीवन में कभी कभी अपने भी गैर लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आता है जब गैर भी अपने लगने लगते हैं। यही सच्चाई है, ये भी एक साथी ने लिखा है। और जरूर आपको ऐसा कोई अनुभव आया होगा जिससे आप ये बात कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी अनजान शहर, अनजान जगह पर होते हैं तो कभी कभी कोई इस तरह मदद कर जाता है, इस तरह साथ दे जाता है कि हमें लगता है जैसे ये हमारे लिए भाई समान है, बहन समान है जिसने हमारी इतनी मदद कर दी। तभी तो हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति हमें ईश्वर रूप में मिल गया। ये हम तभी तो कहते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति यूं ही हमारी मदद कर जाता है, वो भी बिना किसी अपने मुनाफा के, बिना किसी लालच के। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और अभी जो गीत आपने सुना उसका शब्द था साथ। यही साथ तो है जो हमें लोगों से मिलता है, जिसके जरिए ये समाज जिंदा रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं ये गीत अनोखी रात फिल्म से, मुकेश की आवाज में, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत।

तो साथियों, मुझे लगता है ये गीत भी आप ही की लिस्ट में से होगा। बहुत सारे लोगों ने इस गीत को भी सही पहचान लिया था। हमारे एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम वास्तव में सुरीला महसूस हो रहा है। आज की इबारत में शामिल शब्दों पर आधारित गाने लाजवाब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये लिखते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। सार्थकता तब है जब हम दूसरों के सुख दुख को अपनी अनुभूति से समझें, और ये संवेदना हृदय का स्पंदन है जो हमें मानवता से जोड़ती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि बाहरी प्रकाश यानी कि ज्ञान भी आंतरिक संवेदना रूपी दीपक से ही प्रकाशित होता है। वहीं चंदन की तरह शीतल रहकर संबंधों के मूल को समझना सहज बोध, भावनात्मक परिपक्वता और गांभीर्य का प्रतीक है, क्योंकि चंदन की प्रवृत्ति बिना भेदभाव के सुगंध देने की है। सागर अपनी विशालता और गहराई में सब कुछ समाहित कर लेता है, जो सागर की विशेषता है, जिसे हम प्रज्ञा यानी गहरी बुद्धि या स्थिरता के रूप में जाना करते हैं, जो बिना विचलित हुए रिश्तों की गहराई और उसके महत्व को आंकती है। काफी बड़ी बात इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। आपको बताना है इस गीत का कौन सा वो शब्द है जिससे इस गीत को लिया गया है।

जी हाँ, तो इस गीत से जो शब्द था वो था झूठ, और आप सभी ने सही पहचाना है। एक एक टिप्पणी अभी मुझे दिखी, एक श्रोता ने लिखा है कि मजाल है कोई भी गीत श्रोताओं की लिस्ट में से बच जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने कोई दूसरा चैनल ट्यून तो नहीं कर लिया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप विविध भारती ही सुन रहे हैं या कोई दूसरा चैनल आपने गलती से लगा लिया हो, क्योंकि अक्सर जो गीत हमें यहाँ पर, यानी जो कमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने सही गीत पहचाना है और वो गीत बज भी रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। एक साथी लिखते हैं, इस गीत के लिए दिल से शुक्रिया, पर हमारे घर में आज गेस्ट आए हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, पर जैसे ही ये गीत बजा खुद को रोक नहीं पाए और चाय भी गिर गई। देखिए, ऐसा मत कीजिए वरना आपकी चाय गिरने का सारा दोष विविध भारती पर आ जाएगा। आपने तो लिख ही दिया है सारे आम। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल, अच्छा ये कमेंट तो हमने पढ़ दिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है, आत्मा का संगीत तब तक गूंजता रहता है जब तक हृदय में दूसरों के प्रति करुणा जीवित हो। हिमालय जैसी अटूट स्थिरता और नदी जैसी निश्चल आत्मीयता से किसी के मौन को पढ़ना ही परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। दिखावे और छल से कुछ पल की वाहवाही तो मिल सकती है, मगर अंतरात्मा को कभी संतोष नहीं मिलता। इंसान अक्सर अजनबियों की भीड़ में उस एक आत्मीय स्पर्श की तलाश करता है। कुछ लम्हे वक्त के पन्नों पर धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन उन यादों की तपिश और संघर्षों की हर एक चोट मनुष्य को भीतर से और अधिक निखार कर फौलाद बना देती है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है, इस टिप्पणी को पढ़कर सच मानिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी ही इबारत को दूसरे तरीके से लिखा गया हो, इतना मेल खाती ये टिप्पणी है। और चलिए अगले एक गीत की ओर बढ़ते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत है, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

देखिए कितनी अच्छी बात कहता है ये गीत। इसका अर्थ कितना अच्छा है कि यदि आप बेसहारा हैं और किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जो तकलीफें आपने सही है, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक साथी ने इसी तारतम्य में लिखा है कि महामारी के समय में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उस वक्त मेरे अपने सगे मेरे साथ नहीं आए, लेकिन एक पड़ोसी मेरे साथ आया और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। इसलिए कहता हूँ, कभी अपने ही गैर होते हैं और गैर अपनी जान जोखिम में डालकर मददगार साबित होते हैं। ऐसे शख्स उम्र भर अपने रहते हैं। बिल्कुल, आपने जो अनुभव किया, ईश्वर करे ऐसी नौबत किसी पर ना आए, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में आपका उस व्यक्ति ने साथ दिया है, तो सच में लगता है मानो भगवान हमारे सामने आ गए हो। साक्षात भगवान ने ही अपने देवदूत को भेजा हो हमारे लिए। और अभी जो गीत आपने सुना था, उसका शब्द था सहारा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत चित्रलेखा फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी टूटता नहीं। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देता है, संबंधों को गरिमा देता है। एक साथी ने लिखा है, जीवन का गणित कोई समीकरण नहीं है कि जब चाहा सुलझा लिया। संवेदना का तत्व जीवन की को ज्योति देता है। जीवन तब तक अधूरा है जब तक इसमें अशांति बनी रहती है, और शांति के लिए ही इंसान तमाम प्रयास आजीवन करता रहता है। जीवन एक प्रयोगशाला है, यहाँ चंदन सी शीतलता है और अग्नि सी दाह भी। जीवन का पूरा सच केवल एक है, इसका पूरा संसार बहुत रहस्यमय है। परिस्थिति कोई भी हो, हमें बस जीते जाना है। और लीजिए, इसी के साथ सुनवाते हैं मौसम फिल्म का गीत, भूपेंद्र की आवाज में, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत। और इससे पहले जो गीत आपने सुना, उसका शब्द था मन। और पहचानिए कि इस अगले गीत का शब्द कौन सा है।

0: फुर्सत के।
1: किसी ने लिखा दिल शब्द है, किसी ने लिखा ढूंढता शब्द है। वाकई इस गीत में दोनों ही शब्द शामिल है, लेकिन हाँ, जिस शब्द को लेकर हमने इस गीत को चुना था वो शब्द है ढूंढता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कई साथियों ने लिखा है कि ये गाना बहुत ही शांति भरा और सुकून भरा लगता है, अच्छा लगता है। पसंद करने के लिए धन्यवाद। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये सुदास की आवाज में सावन को आने दो फिल्म का गीत। फौक जामी ने इस गीत को लिखा है, राज कमल का संगीत।

तस्वीर शब्द आप सभी ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है कि हमें दुनिया से अलग गांव, यही विविध भारती का प्लेटफॉर्म जहां हम श्रोता रोज मिलते हैं। कितना प्यारा गांव है ये। जी हाँ, ये गांव ही तो है जहां हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये वो मंच है जहां हम दिल खोल कर बोल सकते हैं, और यदि कोई बात, यदि कोई नाराजगी हो, कुछ हो, तो हम यहाँ पर साझा करके उसका समाधान भी कर सकते हैं। जी हाँ, यूं ही हल्की फुल्की बातों के साथ आज का सुरीला सफर अब संपन्न करने की दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में बातें दुनिया की। कहने को तो मात्र तीन अक्षरों का शब्द है दुनिया। छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने भीतर अनंत आकाश, अगाध महासागर। ये शब्द दुनिया जहां दार्शनिकों के लिए एक पहेली है, वहीं वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सी प्रयोगशाला है, और कवियों के लिए उनके लिए भावनाओं का एक बहता हुआ दरिया। हम इस दुनिया में आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये दुनिया अपनी धुरी पर निरंतर घूमती रहती है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है इसका बदलाव। आज जो शिखर पर है, कल एक शून्य हो सकता है। इंसान पूरी जिंदगी चीजें बटोरने में लगा देता है, लेकिन भूल जाता है कि वो इस रंगमंच पर केवल एक मुसाफिर है। अपने बड़ों से हमने ये सुना भी है ना कि दुनिया एक सराय है जहाँ हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुकते हैं।

0: की हस्ती ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
1: दुनिया केवल मिट्टी और पानी का गोला नहीं है दोस्तों, ये रिश्तों का एक घना जंगल है। यहाँ पर प्यार है, तकरार है, वफादारी है तो धोखा भी है। हर इंसान इस बड़ी सी दुनिया में अपनी अलग एक छोटी सी दुनिया बनाता है, जिसमें उसका परिवार, दोस्त और सपने शामिल होते हैं। आज के समय में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया शब्द का अर्थ बदल गया है। अब हम डिजिटल दुनिया के वासी हो गए हैं, जहां हजारों फ्रेंड्स तो हैं, फिर भी इंसान अकेला महसूस करता है। संघर्ष इस बात का है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को सजाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आंतरिक दुनिया यानी हमारा इनर वर्ल्ड उसको भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी तमाम दुखों और संघर्षों के बावजूद ये दुनिया खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता है।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो,

से डरता है क्यों? ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा। रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा।

0: रहता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: चलिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: आज की दुनिया बिखरी सी है सीमाओं में, विचारधाराओं में, लेकिन जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरी दुनिया एक परिवार नजर आती है। विज्ञान ने दूरियां तो कम कर दी है, लेकिन दिलों की दूरी मिटाना अभी बाकी है। दुनिया को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है प्रेम। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। आप देखिए ना, एक छोटा सा बच्चा दुनिया को कौतूहल और मासूमियत से देखता है, जबकि एक वृद्ध इंसान उसे अनुभवों को पोटली मानकर देखता है, यानी कि दुनिया वैसी है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। दुनिया की विशालता और उसमें मनुष्य की छोटी सी हस्ती को स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। हम सबको इस दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी सुंदर, हरा भरा और सुरक्षित छोड़कर जाना है।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: क्या हुआ।
1: आज की त्रिवेणी में बातों का सिलसिला बस इतना ही। दीपा माहेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
4: जी।
3: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमा।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किये। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता

0: सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्रगिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्रगिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो 6 लाख लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे को ही नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता

संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रूपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा

भाजपा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजा जी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणा

0: प्रद और ज्ञान वर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता है, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
1: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
1: श्रोताओं, इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी, अश्वता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे
3: खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद, सारी फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को

0: अपनी माँ की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरेदपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे काट काट काट, मेरा भाई क्या देख रहा है, काट।
4: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
5: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
3: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
6: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
7: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया, और फिर पानी गांवों में घुसने लगा।

0: पानी ने खेतों को ढक लिया। बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
1: अरे अरे पशु पक्षी, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
2: लगता है नदी दूषित हो गई है।
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
2: फसल बह गई।
1: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
2: सारा
1: सामान उसी में तो ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर।
1: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी चलो
2: चलो चलो।
1: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
2: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़े। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
4: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहु ओर हाहाकार। अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे।

उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं। मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेले जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किन्नौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी,
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
5: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
1: हाँ?
5: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
1: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
5: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
1: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
1: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी फट तो हो ही जाएगा।
5: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: चप्पल फाड़ गया।
1: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: हाँ, हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दांतों भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं, पता नहीं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाज ही ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो चलो।

0: सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
1: हाय राम,
0: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं जो पेड़ काटने आए हैं।
0: अरे अरे देखो तो उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
3: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा लगेगा।
4: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे यार मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहने मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी। नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो। चाची,
5: क्या बात है?
2: जल्दी बाहर,
4: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
2: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
6: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
2: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो
7: बहनों को।
8: अरे साथियों, देखते क्या हो, आगे बढ़ो।

0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
1: चिब्बू भाग ले यहां से,
2: भाग ले के बाद में गाली काटने के।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
3: वाह भैया, गौरा ने तो भी बहुत कमाल का काम कर दिया।
4: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे क्या
5: बात है भाई, गौरा कमाल जीतती रहे, मिट्टी जीतती रहे।
6: हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
7: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को,
7: कुसुमलता,
8: जगबंधु,
7: चेतना
8: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार, नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार।
0: जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है। समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा, हालांकि अभी गूगल

0: के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस कि नेट चल रहा हो आपका।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: लेकिन
0: ये
1: फिर भी
0: जो
1: जी फिर
0: मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज, कि क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है, या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात, या कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य
0: मतलब
1: साझा
0: किन
1: करें।
0: परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं
1: जी
0: और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो जो भी कार्य हैं,
1: जी
0: तो हमारे श्रोता बताएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कई
1: जी
0: बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं फूल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों को हम देखते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे ही, चर्चा होगी, आपको भी क्या लगता है आप वो भी बताइएगा
0: मैं
1: जरूर
0: नहीं, हमारे श्रोता
1: हमारे श्रोता।
0: जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए।
1: जी
0: तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे,
1: जी
0: और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे, दो चार
1: बिल्कुल
0: पराठों
1: बनते
0: के
1: हैं
0: नाम बताइए आप भी।
1: जी, मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं,
0: पत्ता
1: कभी कभी
0: गोभी,
1: तो पत्ता गोभी के भी होते हैं,
0: लौकी
1: और
0: का पराठा भी
1: लौकी
0: बनता
1: का
0: है,
1: भी होता है,
0: प्याज का
1: और
0: पराठा
1: जी और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी
0: और
1: पराठा।
0: सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी
1: जी
0: होता है।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है। अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में
1: जी
0: कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारा हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे, दो बहने का। तो फिलहाल एक गाना सुन लें हम।
1: चलिए।

0: ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी, आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है।
3: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने। जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
2: राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
4: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं।
2: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
3: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है।
2: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी।
1: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी, असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी।
3: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाए तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारे उसूल परवरी धरी रह जाएगी और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुवत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं। रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी। शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूँ, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी और जू ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
2: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है।

0: बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
1: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी, दो चार दिन मेरे यहाँ रह लेना फिर चली जाना, मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
0: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी, इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए। बोली,
2: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ, अभी नहीं।
1: बहन क्या रात भर भी न ठहरोगी?
2: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
1: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी, मैं कार भेज दूंगी। कार
2: अब खुद कहला दूंगी। हाँ,
1: अरे बहन तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं, एक शहर में रहते हैं फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
2: घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती, कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला।
0: इतने में राम दुलारी के शोहर मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वैन हो, चेहरे से जहानत मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी ना था। दुआ देकर बोली,
2: कैसे हो गुरु सेवक, आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला?
0: गुरु सेवक हंसकर बोला,
3: बजा फरमाती है भाई, उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है?
2: शिकायत तो सही है, वैसे मैं ना जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है।
3: अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रहिए।
2: नहीं देखो, राम दुलारी भी कह रही है, लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है, फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी, लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना, अभी चलती हूँ।
1: मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी।
0: दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं, गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी।
2: नहीं नहीं, आज आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी, लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी।
0: आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई, रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला,
3: दीदी मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है, दो चार साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा।
2: हाँ, राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, देखो जरा हाथ पैर संभाल कर रहना भाई।
3: अब देखिए, मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ। अब दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे, आप ही बताइए, ईमान खोके पैसे मिले तो क्या?
2: सही कह रहा हूँ,
3: ऐसी दौलत पे तो मैं लानत भेजता हूँ, और आंखें किसकी बचाऊं, सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं, हाँ उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है, मैंने उसका कारोबार संभालना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे।
2: अच्छा,
3: मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था, मुझे 100 रुपए पर रखा और एक ही महीने में 250 कर दिया।
2: अच्छा,
3: आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
2: अच्छा एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है?
3: हाँ वही, मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
2: अच्छा,
0: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया, दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी, उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी।

0: और उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुखातिब ही न हुए।
1: मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, ये दो चार टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, चार पांच पुरानी खाटे, बस यही है मेरे घर के बिसात। आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी, लेकिन आप इस घर से मतलब दिलचस्पी न रही।
0: लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इस इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा,
1: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वही रह जाती, आखिर एक महराजिन क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे?
0: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ न आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं, खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा,
1: अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? हाँ, आप भी चार पांच रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं?
0: वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपने सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले,
2: महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है।
1: तो लाकर क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते? तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहां मिलेगी? महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाते हैं। गुरुसेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से।
0: ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपने दानिश्त में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
2: अब मेरी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। दिल लगाकर अपना काम करता हूँ, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता हूँ। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब मैं क्या करूं?

रूप कुमारी की नाराजगी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहाँ मिलते हैं। वो तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है। बिलगरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हक है कि उन्हें निशाना या मलामत बनाए। अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो। रूप कुमारी हसीन है, शीरी जबान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी जबान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मादूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से

0: एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई, एक दूसरे के ऐब और हुनर मालूम हो गए। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती, फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाट देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिलशिकन, मायूसकून, गैर मुनसिफाना ख्यालात पैदा होना बिल्कुल फितरी है। वो कोई फिलोसोफर नहीं, तारिक को दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमादा हो गए।
1: मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी आपने सुनी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, उमानाथ, अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी दो बहने आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।
2: साथियों, आप सुन रहे थे दो बहने कहानी का भाग दो। इसकी अगली कड़ी आप सुनिएगा अगले सोमवार। और अब सुन रहे हैं हम एक गीत।
3: सुनते हैं ये गाना।

0: चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गाना था और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है। क्या कहेंगी दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना?
0: अब तो जी, हमारे जी, बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है, तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो घटा सकता है, और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए जीवन।
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है, मन में उत्पन्न हो

0: गए विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह हैं, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी। अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें, तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ न सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं। वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें।
1: बिल्कुल।
0: तो देखिए आप थोड़ा सा हम अगर सोच सकते हैं सही तरीके से
1: सही और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं। फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं, उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
0: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, कि कहीं पे सैर के लिए निकल जाना या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहां पे कि आपको अच्छा लगे, मिलके लोगों के साथ व्यायाम करना या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सा हलचल हुआ या कुछ उठापटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणियां भी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित है, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं और यही प्रतिकूलता को का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पे जाइए जहां से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, कुछ व्यायाम करना जरूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना जरूरी है और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राजी थे, सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतजार करो, इंतजार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है।
0: और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है, वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेकर बहस होने वाली थी, उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था, हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
1: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है। अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रही, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियां भी लेकर आती हैं।
0: जैसे कि
1: बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खासतौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था, और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज करते हैं, चर्र चू, और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है।
0: हाँ,
1: तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है, और किसी को बुलाकर किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए।
0: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है, जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सोख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी में दरार, नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के, और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है, और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहां पे आप देखेंगे कि नुकसान ज्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर है उस कमरे के।
1: और हमारी एक सखी है जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें। सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए, और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है उस जल के पैकेट का उपयोग करें, या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो पोंछ देती है, सारे अलमारी जितने टेबल हैं कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी उसमें।
0: बिल्कुल सही कहा, और इन सब चीजों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें खासतौर पर बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है, तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है, और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अब हम क्या कर सकते हैं?
1: गाना सुनवा सकते हैं, तो ये रहा गाना।

0: प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे
1: बिल्कुल,
0: कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में।
1: और तो जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के, और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में, और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है, तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही है। और जो फंगस दिखाई देता है खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती,
1: बिल्कुल
0: धूप कहाँ से लाएंगे
1: धूप
0: आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती हैं, मदद करती हैं जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए, क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो। और
0: और
1: साथ
0: फर्नीचर
1: जी
0: के लिए सही कवर भी जरूरी होता है कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखाकर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें
1: जी
0: तो तेज फैन चला दें, तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा
1: जी
0: लगेगी,
1: हवा
0: तो
1: लगे
0: जो नमी
1: जी
0: है वो
1: बिल्कुल।
0: कम हो
1: और
0: जाती है।
1: बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है, तो हम डिह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए, या नीम की सूखी पत्तियां भी, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खास तौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है, तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान और कीमती चीजें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
0: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती हैं, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर
1: जी
0: पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम?
1: खाना खाते हैं।
0: तो आज किस खाने की बातें करने वाले थे?
1: आज हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे कि भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के, बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
0: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए जैसी की बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है।
1: जी, ये अलग
0: और
1: तरह की रेसिपी है, लेकिन हमने अपनी श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठा।

0: होगी रेसिपी। तो भरवा पराठे में जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए, मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसे ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताजी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दूकस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा जो कि पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
1: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है।
0: जी
1: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें। और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर ले, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर लें। वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है, तो तवे पर सेक ले। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही
0: एक
1: होता
0: ही
1: है,
0: होता है जी।
1: पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बनाएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश की व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने के, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज, गुलजार के बोल थे, राहुल देवबर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेहत नामा।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं, तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
2: पुरानी यादें ताजा हो रही है
1: जी।
2: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज, यही आप लोगों की आवाज और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं रह सकते हैं और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
2: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
1: जी।
2: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
1: जी।
2: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
1: जी।
2: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
1: जी।
2: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है।

0: सकती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
1: जी.
0: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: जी, तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है।
0: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है, ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुई कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है, लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है,
1: हाँ।
0: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली, उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट, जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा, ये गलत बात है, और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल, तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं।
0: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
1: जी।
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं
1: जी।
0: एक कैंसर नहीं, वो हम चेक करते हैं। दूसरी बात, उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है, उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
1: जी जी।
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
1: जी।
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है।
1: जी जी।
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
1: जी।
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं, उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही, ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
1: जी।
0: जैसे डायबिटीज, जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है
1: जी जी जी।
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं
1: जी।
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है
1: जी जी। तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी या क्या तरीका है?
0: राइट, सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को
1: जी जी।
0: उसका

0: स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सीवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है
1: जी।
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है। यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, ये ब्लड टेस्ट है
1: जी।
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है
1: जी।
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है। PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण हैं, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं
1: जी।
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है। बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं
1: जी, जी।
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है।
1: जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती है कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं। तो बेहतर है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहाँ पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: जरूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है।
1: क्या बात है।
0: और लोगों के गुड विशेष की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ। क्या बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं,
0: जी
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, लेकिन
0: जी
1: ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो
0: बेहतर
1: हमारी इच्छा रहती है।
0: जी
1: सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है,
0: जी
1: लेकिन हम भगवान नहीं है। हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट। सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना,
0: जी
1: या तो
0: जी
1: ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि
0: जी
1: हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। So, पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस।
0: जी
1: आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है। प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है,
0: जी
1: जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और 5-रिडक्टेज इनहिबिटर। ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
0: जी
1: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई, तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी
1: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है, जिसे हम यूरोडायनेमिक्स कहते हैं,
0: जी हाँ
1: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की। यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
0: जी जी
1: सो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के
0: जी
1: लिए। पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
0: जी
1: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट

0: को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रेज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सकें और पेशेंट को राहत दे सकें, ये कोशिश रहती है।
1: जी
0: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं
1: जी जी
0: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं,
1: जी जी
0: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है।
1: जी
0: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी इसका प्रचार हो रहा है,
1: जी जी
0: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल की जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि
0: जी,
1: हमें
0: जी.
1: 2-3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
0: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट इज क्वाइट ऑल राइट। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है। कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है।
1: जी, जी.
0: लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था वो अब नहीं रहा है, पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े। तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें।
1: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की
0: किशोर
1: आवाज,
0: कुमार की आवाज, क्या गाना है
1: जी। सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से
1: करेक्ट
0: जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं,
0: जी
1: जिसमें ये सब चीजें आती है,
0: जी
1: डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है। सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है,
0: जी
1: क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपकी शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं। सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती है, और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है,
0: जी
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है।
0: जी लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो
1: जरूर
0: वैसे भी नुकसानदेह
1: जरूर
0: है। तो
1: जरूर
0: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है, और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है।
0: जी
1: स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ
0: जी
1: चीजें जेनेटिक्स हैं, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है, और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
0: जी। यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है कि?
1: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना,
0: जी
1: ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए,
0: जी जी
1: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है, लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है,
0: जी
1: जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
0: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा लोग।
1: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत
0: बिल्कुल
1: प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है।
0: जी
1: सो हर पुरुष को, मैंने बताया, ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है।
0: जी और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके कारण?
1: सो प्रोस्टेट कभी कभी

0: भी यंग एज में वहाँ इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, कभी कभी वहाँ पस जमा होते हैं जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है। सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ही बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं, या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है।
1: जी, तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
0: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है।
1: जी,
0: एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत थी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है, और जब यूरिनरी समस्या बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है। अब बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में, और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या शुरू हो जाती है। सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है। सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है।
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए। कौन सा गाना?
0: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
1: ब्लैक पेंथर
0: काफी का गाना। जी, रोमांटिक गाना है, लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है।
1: जी जी, डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक जमाना था गाते थे
1: जी।
0: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूदिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है।
1: जी जी,
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है।
1: जी,
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं। सो म्यूजिक इज वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस।
1: जी जी,
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स है जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है।
1: जी, तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे नहीं,
1: बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है, रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो ये क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ सावधानी रखें कि स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं।
0: जी
1: दूसरी बात लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर

0: लेंगे,
1: जी
0: रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण, किडनी ज्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है।
1: जी
0: सो काफी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं, और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफी दिक्कतें आने लगती है।
1: जी
0: सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है, वैसा नहीं है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेस है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं।
1: जी
0: कुछ लोगों की एसिड स्लीप डिस्टर्बेंस के पैटर्न रहती है, और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं। सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टरबेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
1: जी
0: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होके आ जाते, कहते कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है,
1: जी
0: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं। इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
1: तो इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
0: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं। जब उनकी मेनली, जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं, उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं, क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है। और जब ज्यादा यूरिन जमा होने लगता है, धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है।
1: जी
0: जब एक समय में खाली नहीं होती है, तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है। ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल। कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है, वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए। और फोर्थ, इन्फेक्शन, विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफी अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये कॉमन कारण है, और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है, और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो, जैसे मैंने बताया, कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, कि काफी लोग मानते कि बहुत पानी पीना चाहिए। सच बात है, पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है, तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है, उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है। और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से, वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा, एक्सरसाइजेस, ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स, ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सके। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में। और दूसरा, यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है, महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।

0: एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है,
1: जी
0: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है।
1: जी
0: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है, उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: देर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है।
1: जी
0: सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफस्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस
1: लक्षण
0: कम
1: है
0: हो जाए वो पहले कोशिश करनी है।
1: जी
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है। और थर्ड, फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या
1: जी
0: कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है।
1: जी जी
0: कुछ कंडीशन जिसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है, तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है। अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, और
1: जी
0: काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहाँ किसी को हम इसके बारे में बताएं,
1: जी
0: ये
1: जी
0: गलत बात है। आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है।
1: बिल्कुल। अपने श्रोताओं को बता दें, ये विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और बड़े ही जानकार डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम।
0: जरूर,
1: कौन सा गाना सुनवाया?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना जो दंगल मूवी में है
1: जी
0: बहुत अच्छा गाना है, और
1: जी
0: वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे, फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है, वो गाना अच्छा रहेगा।
1: जी सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं। क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है, सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में
0: जी।
1: और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है
0: जी।
1: क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ती कि जिसकी आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना जरूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि कभी कभी कहां से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है
0: जी।
1: सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं
0: जी। इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी है कई बार आजकल, जब न्यू कपल खासतौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
1: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये सही नहीं है
0: जी।
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है
0: जी।
1: हर पेशेंट वेदर इज मैन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है
0: जी।
1: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है
0: जी।
1: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है
0: जी। बिल्कुल।
1: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इम्पोर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से, इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो।
0: बिल्कुल।
1: ये भी होना नहीं चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनी बडी हेल्थी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। सो ये

0: बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बहुत सारी आती हैं, तो आपके इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं।
0: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: कुछ
1: बिल्कुल,
0: चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन
1: शर्म
0: इससे
1: और
0: शर्म के
1: संकोच।
0: मारे में कि
1: जी
0: ये बात
1: बिल्कुल
0: हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
0: जरूर, लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं। कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता, लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: दूसरा जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है,
1: ओहो
0: ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए, इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
1: ओ
0: इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या
1: जी
0: जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक ना हो जाए।
1: जी
0: ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है।
1: जी दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से रिले विविध भारती के कार्यक्रम। शाम के 5 बज रहे हैं। अब युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।
1: युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी अपनी युववाणी होस्ट और दोस्त पिंकी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी आज की चर्चा और साथ ही कराएंगे मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। दोस्तों, आधुनिक कतर के शिल्पकार के रूप में विख्यात शेख हमद बिन खलीफा अल थानी केवल एक शासक ही नहीं बल्कि दूरदर्शी नेता और विकास के प्रतीक थे। उनके नेतृत्व में कतर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की और साथ ही उन्होंने देश को एक नई पहचान दी और उसे विश्व मंच पर मजबूत स्थान दिलाया। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान, समर्पण और दूरदर्शिता को नमन करते हैं। तो दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
2: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
3: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
2: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं। हर लफ्ज में छुपी है

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की संरचना को समझने में चट्टानों का बहुत बड़ा महत्व है। चट्टानें केवल पत्थर ही नहीं होती, बल्कि ये हमारे ग्रह के इतिहास, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज का यह अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस हमें चट्टानों के महत्व को समझने और उनके प्रति जागरूक होने का अवसर देता है, और यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि चट्टानें हमारे जीवन में कई तरह से उपयोगी हैं, जैसे भवन निर्माण, खनिजों का स्रोत और वैज्ञानिक अनुसंधान में। इसके साथ ही यह दिवस प्रकृति के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का भाव भी पैदा करता है, खासकर युवाओं में, ताकि वे पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे सकें। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस न केवल ज्ञान बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि यह हमें प्रकृति से जुड़ने और उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। तो आइए दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस पर हम सभी युवा यह संकल्प लें कि हम प्रकृति को समझेंगे, उसका सम्मान करेंगे।

और उसके संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे और चट्टानों की तरह मजबूत बनकर हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और पर्यावरण की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। यही हमारी छोटी सी पहल भविष्य को सुरक्षित और सुंदर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। तो दोस्तों, चर्चा हम आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत जो लिया गया है फिल्म टू स्टेट से, जिसमें आवाज दी है यशिता शर्मा और के मोहन ने।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म टू स्टेट से यशिता शर्मा और के मोहन की आवाज में ये गीत। वक्त हो गया है एक बार फिर ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। जल है तो कल है और युवा ही इस कल का हल है। कैच द रेन नामक अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा का पानी सहेजे, जहां भी गिरे तब भी जब भी गिरे। भारत जैसी विशाल युवा आबादी वाले देश में इस अभियान को एक सफल जन आंदोलन बनाने की पूरी जिम्मेदारी देश के युवाओं पर है। युवा अपनी ऊर्जा, आधुनिक सोच और तकनीकी ज्ञान से जल संरक्षण के इस संकट को दूर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं कैच द रेन अभियान में युवाओं की मुख्य भूमिका के बारे में। आज के युवा बढ़ता जल संचयन के लिए नए और रास्ते तरीके खोज सकते हैं। वे मोबाइल एप्स और ड्रोन मैपिंग की मदद से अपने इलाके, सूखे कुओं, तालाबों और जल स्रोतों की पहचान कर सरकार को सूचित कर सकते हैं। और साथ ही युवा अपने घरों में पानी की बर्बादी को रोककर और स्वयं भी पानी की बचत करके मिसाल पेश कर सकते हैं, जैसे आरओ फिल्टर से निकलने वाले वेस्ट पानी का इस्तेमाल पोछा लगाने या पौधों में यूज करने की आदत डालना और दूसरों को भी प्रेरित करना। युवा सोशल मीडिया के माध्यम से जल संरक्षण के संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए वे नुक्कड़ नाटक, रैलियों और दीवारों पर पेंटिंग का उपयोग करके गांव और शहरों में लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा युवा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण चलाकर मिट्टी की नमी को बनाए रखने और भूजल स्तर को सुधारने में मदद कर सकते हैं। यदि देश का हर युवा ठान ले कि वह बारिश की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं बहने देगा तो कैच द रेन अभियान पूरी तरह से सफल होगा। यदि दोस्तों आप भारत देश को जल संकट से मुक्त करना चाहते हैं तो इस अभियान में भाग लेकर पानी की बर्बादी से बचें और दूसरों को भी वर्षा की बूंदें सहेजने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैच द रेन अभियान के बारे में। वक्त हो गया है फिल्मी गीतों का, तो आइए सुनते हैं फिल्म बागी 2 से ये गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म बागी 2 से जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गीत। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: सुनिए सुनिए सुनिए, 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 तक आकाशवाणी झांसी पर।
2: मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे प्रेरणा स्रोत के बारे में जिन्होंने कम उम्र में ही अपनी बुद्धिमता और मेहनत से दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। यह भारत के उभरते हुए शतरंज खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि निहाल सरीन है, जिन्होंने अपनी तेज सोच और शानदार रणनीतियों के दम पर कई बड़े टूर्नामेंट जीते। इनका जन्म 13 जुलाई 2004 को केरल में हुआ था। दोस्तों बचपन से ही उन्हें शतरंज में रुचि थी और उन्होंने बहुत जल्दी इस खेल में महारत हासिल करके ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया, जो शतरंज में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें रैपिड शतरंज में उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी, जहां तेज सोच और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत होती है। उनकी सफलता

सबसे बड़ा कारण उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण है। वे हमेशा नए नए तरीके सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते। यही वजह है कि वे दुनिया के शीर्ष युवा खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। निहाल सरीन आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। वे यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और पूरी मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। उनका जीवन हमें संदेश देता है कि उम्र कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती। कम उम्र में भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। बस आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास सच्चा होना चाहिए। निहाल सरीन की मेहनत और लगन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। तो साथियों, आप भी अपने सपनों को पूरा करने में आगे बढ़ते रहें और हमारे साथ सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, जो लिया गया है फिल्म अनजाना अनजानी से।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे शेखर रबजियानी, श्रुति पाठक और मोहित चौहान की आवाज में ये गीत। बढ़ते अपनी चर्चा की ओर, तो आज के समय में दोस्तों स्वस्थ रहना हर व्यक्ति की पहली जरूरत बन गई है। इसके लिए सही आहार का होना बहुत जरूरी है। सही आहार के लिए फलों में नाशपाती एक ऐसा फल है जो स्वाद के साथ साथ उनके स्वास्थ्य

लाभ भी प्रदान करता है। तो आइए दोस्तों इसी संबंध में चर्चा करते हैं नाशपाती के स्वास्थ्य लाभों के बारे में। नाशपाती एक अत्यंत पौष्टिक और स्वादिष्ट फल है जो फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। नाशपाती में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो कब्ज की समस्या को दूर करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ऑक्सीडेंट त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे यह ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है, इसलिए सीमित मात्रा में मधुमेह के रोगी भी इसे खा सकते हैं। तो साथियों यदि आप इसे अपनी दिनचर्या में संतुलित मात्रा में शामिल करते

ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है, इसलिए सीमित मात्रा में मधुमेह के रोगी भी इसे खा सकते हैं। तो साथियों, यदि आप इसे अपनी दिनचर्या में संतुलित मात्रा में शामिल करते हैं तो यह आपको स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने में सहायता करता है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको नाशपाती के स्वास्थ्य लाभ के बारे में। वक्त हो गया है एक बार फिर फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत जो लिया गया है फिल्म आपकी कसम से।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म आपकी कसम से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। दोस्तों आजकल हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी की सफलता, किसी की उपलब्धियां या किसी की जीवन शैली देखकर हमें लगता है कि हम उनसे पीछे हैं। यही सोच धीरे धीरे हमारे मन में निराशा और आत्मसंदेह पैदा करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी अलग पहचान, क्षमता और जीवन यात्रा होती है, इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी और उसकी सफलता का समय अलग होता है। किसी की उपलब्धियों को देखकर खुद को कम मत समझिए, बल्कि उनसे प्रेरणा लीजिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। याद रखें, आपकी असली प्रतिस्पर्धा केवल खुद से है, इसलिए हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो साथियों, घड़ी की सुइयां हमें और ठहरने की इजाजत नहीं दे रही हैं। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का।

0: यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप हमारा प्रोग्राम रोज शाम 5 बजे न्यूज ऑन AIR के माध्यम से सुन सकते हैं और अपने सुझाव हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज @AkashvaniJhansi के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपकी अपनी युवानी दोस्त पिंकी को। नमस्कार।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम नारी जगत।
2: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को प्रत्यंचा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, कैसी हैं आप सभी? वैसे भी अब तो गर्मी का सीजन फिर से लग रहा है, आ गया है। बारिश थोड़े दिन के लिए बंद हो गई है, पर हाँ, इंतजार का फल मीठा होता है, तो बारिश भी होगी और हम फिर से वही सुकून भरी जीवन जिएंगे। मैंने आज आपको बताएं कि जो कतर है उसकी राजधानी है दोहा, और वहां के जो वर्तमान अमीर या जिनको हम शासक भी कह सकते हैं, महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी थे, जिनका निधन रविवार को लगभग 74 वर्ष की आयु में हो गया है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 13 जुलाई 2026 को पूरे देश में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। आज बात करते हैं नारी शक्ति की। जी हाँ, हम महिलाओं में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी को हल करने की एक अद्भुत क्षमता ईश्वर ने हमें दे रखी है। किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे परिवार की समस्या हो, घरेलू समस्या हो, हर परेशानी से हम महिलाएं आराम से लड़ सकते हैं। आज हम बात करते हैं नारी शक्ति से जल शक्ति। मैंने नारी शक्ति से जल शक्ति भारत सरकार का एक प्रमुख दृष्टिकोण अभियान है, जो कि जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को जल संसाधनों के संरक्षण में नेतृत्वकर्ता के रूप में सशक्त बनाना है, क्योंकि वे जल प्रबंधन की मुख्य आधार होती हैं। मैंने बात चाहे ग्रामीण अंचल की हो या शहरी क्षेत्रों की, पानी की व्यवस्था करने की मुख्य जिम्मेदारी हमेशा महिलाओं पर ही होती है। अक्सर घरों में महिलाओं के ऊपर ही पानी की जिम्मेदारी को देखा जाता है। जल शक्ति अभियान इसी नारी शक्ति को पहचान कर उन्हें जल संरक्षण के केंद्र में लेकर आने की कोशिश करता है। हम महिलाएं अपने आसपास, आस पड़ोस में और परिवार के बीच जल की बर्बादी को रोकने और वर्षा जल संचयन के प्रति लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत महिलाएं जल निकायों की सफाई, भूजल पुनर्भरण और घर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हो सकती हैं। जल समितियों और ग्राम स्तर की प्रबंधन योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी उन्हें जल प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार देती है। पर्याप्त स्वच्छ जल की उपलब्धता न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य और समय की बचत करती है, बल्कि उनको दूर दूर से पानी ढोने की मजबूरी से भी मुक्ति दिलाती है। साथ ही साथ उनको शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी समय और अवसर प्रदान करती है। मैंने महिला शक्ति की हम बात कर रहे हैं जल शक्ति से जोड़कर, एक ऐसी ही प्रेरणा स्रोत महिला है जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है अमला अशोक रुइया, जो कि एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जल संचयन में अपने काम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जानी जाती हैं। अमला रुमैया भारत की एक प्रमुख सामाजिक उद्यमी और परोपकारी महिला है। उन्हें जल संरक्षण में और प्रबंधन में काम के लिए जाना जाता है। सन 1946 में यूपी के एक संपन्न परिवार में जन्मी अमला रुइया की परवरिश एक साहित्यिक और आध्यात्मिक माहौल में हुई थी।

0: उत्तर प्रदेश में वे एक बेहद सरल और अनुशासित जीवन व्यतीत करती थी। अमला रुईया ने कम उम्र से ही समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पहचानना प्रारंभ कर दिया था। इसी कारण उन्होंने पहला अवसर उनको जैसे ही मिला उन्होंने स्वयं को सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित किया। सन 1999 में, सन 2000 में और 2003 में राजस्थान में पड़े गंभीर सूखे की स्थिति में अमला रुईया को बहुत परेशान किया। इसी घटना के बाद वे गांव में जल संचयन के प्रति प्रेरित हुई और साथ ही साथ जल सुरक्षा प्रदान करने वाले चेक डैम बनाने के लिए गांवों के साथ साझेदारी करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट की उन्होंने स्थापना की। मैनो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं जल शक्ति से जोड़कर, कुछ ऐसी ही महिलाएं हमारे बुंदेलखंड की भी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख महिलाओं के नाम हम आपको बता रहे हैं। मीरा, मीना देवी अहिरवार, राधा कुशवाहा और मंजुलता जी, जिन्होंने जल संरक्षण के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाई है। इन्हीं कुछ महिलाओं से हमारी और आपकी रेडियो सखी रूपाली जी ने बातचीत की है, आइए सुनते हैं।
1: बुंदेलखंड की जो धरती है वो वीरांगनाओं की धरती है और समय समय पर बुंदेलखंड की वीरांगनाओं ने अपनी धरा के लिए ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में घुरारी नदी का जिक्र किया और घुरारी नदी पर 30 जल सहेलियों ने 6 दिन में चेक डैम बना दिया था। ये नदी निवाड़ी के 14 गांवों के अलावा झांसी के सिमरावारी खैलार से होकर गुजरती है। तो जल संरक्षण के प्रयासों में अग्रणी बुंदेलखंड की जल सहेलियां आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें।
2: नमस्ते, मेरा नाम मीरा है और मैं ग्राम सिमरावारी।
3: नमस्ते, मेरा नाम राधा है और मैं ग्राम सिमरावारी से हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम मीना है, मैं सिमरावारी से।
5: नमस्ते, मेरा नाम मंजुलता है, मैं ग्राम सिमरावारी से।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: आपको भी दीदी धन्यवाद।
1: मीरा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि ये जो जल संरक्षण का जो कार्य है जो आप लोगों ने किया, तो कैसे शुरुआत हुई इसकी, कैसे विचार आया आपके मन में कि ये हमें करना है, किस तरह से आपने इसको शुरू किया?
2: जैसे कि मैंने जो मैं पहले स्वयं सहायता समूह में थी
1: जी,
2: तो मैंने गांव-गांव जाके देखा कि पानी की इतनी समस्या थी कि बहुत दूर दूर से महिलाएं पानी ला रही थी। तो मेरे मन में जो आया, मेरे गांव में भी थी, तो मेरे मन में जो ख्याल आया कि इस चीज को हम पानी के रोकने के लिए जो बर्बाद हो रहा है, कैसे हम इसका निर्णय करें।
1: बिल्कुल हाँ, क्योंकि देखिए बुंदेलखंड में पानी की समस्या तो है ही और मुझे ऐसा लगता है कि घर में महिलाओं को सबसे ज्यादा पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर काम में, घर के काम, मखाना बनाने में, हर तरह के काम में उन्हें पानी की आवश्यकता होती है।
2: तो जब महिलाओं को सुबह उठती हैं तो महिलाओं को पानी की जरूरत है
1: जी,
2: पर क्या उनका काफी समय एक कोस से दो कोस के ला रही, गाँव में ऐसे है
1: जी,
2: जगह जगह से पानी ला रही और बच्चों का नहलाना धुलाना खाना पीना सब पानी, शुरू से सुबह से लेकर रात तक पानी का काम महिलाओं का है
1: जी जी।
2: इसलिए हम सोचते हैं कि हम महिलाओं को किस तरह से जोड़ें, एक संगठन बनाएं।
1: अच्छा, तो इस तरह से आपने सोचा कि आपको ये काम करना चाहिए। मीना जी, आप बताइए आपके मन में ये क्यों विचार आया कि जल संरक्षण के काम से आप जुड़ेंगे?
4: क्यों, मुझे इसलिए विचार आया कि जब मेरी ससुराल में शादी हुई थी
1: जी,
4: तो वहाँ पे मैंने अपनी ससुराल में देखा सबसे पहले पानी की परेशानी थी
1: जी,
4: पानी की परेशानी थी। तो मैंने जो संगठन में जुड़ा, मेरी जो दोस्त थी मीरा नाम से, उनने मुझे संगठन में जुड़ा, उसमें मुझे चर्चा मिली पानी के बारे में कैसे, तो मैंने प्रधान से चर्चा की कि आगे मुझे बोर, तो वहां पे बोर कराया, तब भी पानी सफल हुआ। मैंने अपने घर में भी बोर कराया, पानी सफल। मैं परेशान रही पानी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आज मैं तो भर लूंगी, सका मेरी लड़की हो रही क्या, अभी वो भी पानी भरेगी।
1: अच्छा, दूर दूर से पानी भर के लाना हाँ, होता है,
4: दूर दूर से पानी भर के लिए। तो मैंने प्रधान के जरिए फिर यहाँ पे जो पाइपलाइन की चर्चा थी, तो वो कहला पाइपलाइन में टैम है, हम आपके सामने एक बोर कराए दे, तो उनने हमें बोर कराया, उससे हमें पानी की सुविधा हुई। काफी महिलाएं वहां से पानी भरती हैं, आज महिलाएं कहती हैं कि पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है, इसलिए हम अपना आगे कदम बढ़ाया पानी के लिए। और पानी

0: हमें मिल तो रहा, उसके रिचार्ज के लिए भी हमने फिर कहा गया कि उसको अगर पानी बगड़ेगा वो जमीन में नहीं जाएगा तो कैसे ऊपर आएगा, तो अपन को रिचार्ज भी करना है और पानी की बचत भी करना।
1: अच्छा राधा जी, आप बताइए कि आप कैसे जुड़े इस कार्यक्रम से, आपको क्यों लगा कि जल संरक्षण जरूरी है?
2: जी दीदी, वो ऐसा रहा कि जो हमारी यहाँ जो नदी है कुरारी नदी, तो हमारी गांव की महिलाएं हैं जो बहुत परेशान होती थी पानी के लिए
1: जी।
2: हैं, तो हमने देखा कि हमारी जो दो बहनें हैं जो मतलब साड़ियां पहन के निकलती हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग जाती कहाँ है।
1: बिल्कुल।
2: तो मैंने सोचा इन लोगों से मिलने की कोशिश भी की। मैंने कहा दीदी आप लोग ऐसा क्या करती है, ये साड़ी पहनकर कहाँ जाती है, क्या करती है?
1: अच्छा, एक सी यूनिफॉर्म के साथ?
2: हाँ, यूनिफॉर्म के जरिए मेरी पहचान हुई उनसे। तो उन लोगों ने बताया दीदी हम पानी के लिए कार्य करते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो हमने उनसे चर्चा की कि दीदी अगर पानी के लिए कार्य करती हैं तो जो अपनी नदी का जो चेक डैम, घुराई नदी का जो चेक डैम टूटा पड़ा है, तो उसके लिए कुछ काम हो सकता है क्या, आप बातचीत करके हमको बताएं। तो भाई एक दिन बैठे हम लोग, तो बातचीत चर्चा हुई, बोले इस बात के बारे में सही है और हम और भी बहनों से चर्चा करेंगे। तो उन लोगों ने चर्चा में बताया कि भाई हम आप लोगों का साथ देंगे। तो एक दिन हमने संगठन बनाकर लगभग 30 बहनें, 25-30 बहनों को इकट्ठा करके कहा कि भाई ऐसा कार्य करें कि इससे जो पानी रुक जाए यहाँ पे खेती के लिए, जानवरों को पीने के लिए वहाँ पे पानी नहीं रुक रहा था। हाँ, तो हम सभी बहनों ने जुड़कर एक दिन तय किया कि आज से ये काम करेंगे। तो हम घर से 9 बजे के टाइम से निकलते थे और शाम को 5 बजे आते थे।
1: अच्छा।
2: तो वो बोरियां भरकर मिट्टी खुद खोदते थे, भरते थे सभी बहनें इकट्ठा होकर और सर पे रख के ले जाकर नदी, हाँ, बोरी बंद करके वहां पे हम लगाई हम लोगों ने सबने। जब लगाते लगाते थोड़े ऊंचाई पे आ गया तो लगा हमें कि पानी रुकने लगा, जो पानी बहुत नीचे था पैर तक वो यहाँ घुटनों तक आया। फिर हमने और भी आगे बढ़ाकर चढ़ाकर बोरियां रखी तो और ऊंचाई तक आया। तो यहाँ ऐसे करते करते हम लोग गले तक यहाँ पानी आ गया और खूब अच्छा भर गया पानी।
1: अच्छा।
2: तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी बहनों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। तो हम चाहते हैं कि जहाँ भी पानी की परेशानी हो हमारी बहनें इसी तरह से मेहनत करके आगे बढ़े और सफल हों, और हम बहुत खुश रहेंगे और आगे भी करना चाहेंगे।
1: जी बहुत अच्छे। अच्छा मीरा जी, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपने जल संरक्षण का ये कार्य कैसे शुरुआत हुई। अब जैसे इन्होंने बताया कि इस तरह से इन्होंने कार्य किया और काफी सारी महिलाओं को इन्होंने जोड़ा, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने लोगों को कैसे जागरूक किया, किस तरह से उन्हें अपने साथ जोड़ा, क्योंकि ये काम तो काफी कठिन रहा होगा, तो क्या क्या कठिनाई आई, क्या चुनौतियां आई इसमें?
3: पहले जब मैं 2016 से काम किया है
1: जी,
3: तो पहले तो मुझे साल डेढ़ साल तो महिलाओं को
1: जोड़ने समझाने
3: में लगा।
1: अच्छा, तो आप लोग गांव गांव में घर घर जाके महिलाओं को इसके लिए
3: जागरूक किया?
1: जी,
3: हर गांव में जाके किया और उनको दी के हम तुम्हारा किचन गार्डन के लिए भी मतलब लगा रहा, ये कर रहा, कुछ थोड़ा उनको लालच दी के हम तुम्हें पेड़ पौधे देंगे, जब आपका किचन गार्डन लगा तो पेड़ पौधे भी हम लोगों ने बांटे हैंगे। और महिलाओं को जोड़ने में थोड़ी तकलीफ दे आई कि उनकी जो सासे जो हैं पुराने हिसाब की हैं, वो भंगों को निकलने देना
1: हाँ,
3: नहीं
1: मतलब महिलाओं का निकलना,
3: वे निकलना चाहती हैं लेकिन सास नहीं निकलने देती।
1: तो आपने उन्हें
3: कैसे समझाया? किसी के पति नहीं निकलने देते, तो हमने उन सबको बैठ के समझाया, देखो आज अपने यहाँ पानी की इतनी समस्या है, सूखा पड़ रहा है, पानी धरतल के नीचे चला जा रहा है, और जब आज अपन पी रहे हैं, आज अपन को मिला, अभी अपने सामने बोतलों से बिखरा, आगे बच्चों के सामने क्या होगा। तो हम लोगों ने इस तरह से महिलाओं को जोड़ा और कुछ हम लोगों ने गांव में गए एक नाटक के माध्यम से।
1: अच्छा, वो जो नुक्कड़ नाटक होते हैं,
3: नुक्कड़ के नाटक से भी समझाया और उसका नाम के गीत के माध्यम से ही बहनों को समझाया। तो बहुत बहनों को कुछ इसमें ज्यादा समझ में आई, वैसे समझाने से नहीं समझी, इसमें मैंने ज्यादा अच्छा लगा। बच्चों के स्कूल में किया तो बच्चे भी खुश हुए और कहा, अब बच्चे भी कहने लगे कि हमें मतलब कम पानी देने चाहिए। सो पहले क्या करते थे, वो लिया जग लिया भर के दे दिया। अब सबने ये सोची, हमारी बहनों ने
1: महत्व को पता,
3: हमारी बहनों ने सबने ये सोचा पानी जो बर्बाद हो रहा है, ये समर वगैरह लगी है तो इसके लिए भी हम लोग कहीं जाते हैं तो समर के लिए कहते हैं, बच्चे ज्यादा समझते हैं।
1: जी बिल्कुल, बच्चे
3: माँ लोगों को नहीं रहता, उन्हें लग गया तो पहले भरने में तो कितनी समस्या आ रही, लेकिन अब फैलाने में ना कोई समस्या नहीं है, लेकिन बच्चों को समझ में आती तो बच्चे भी कहते हैं हाँ मम्मी अब पानी धरतल के नीचे चला जा रहा, तुम क्या जानो, कहने लगे आगे हम लोग का क्या होगा। तो मतलब इस तरह से हम लोग गाँव गाँव जाके हर शिक्षा देते, हमारे में काफी महिलाएं जुड़ी हैं। वैसे हमारा जो संगठन है 30 महिलाओं का है।
1: अच्छा। और जो वैसे आपका स्वयं सहायता समूह है वो 30 महिलाओं
3: 30 महिलाओं का, वैसे हमारा संगठन बड़ा है, काफी महिलाएं जुड़ी हैं हमारे
1: तो
3: पास।
1: क्या आप इसे निजी स्तर पर भी करते हैं अलग संगठन बनाकर?
3: नहीं, हम अपने ही संगठन में जोड़ेंगे इनको, अभी जोड़ा नहीं है। हमारा सबसे पहले 30 ही महिलाओं का बना था, फिर धीरे धीरे कब के हमारी काफी महिलाएं

0: हम लोग पानी जैसे कि बरसात का पानी भी है तो हम लोग कहते हैं इस गांव में जाके इसको बर्बाद नहीं करो, किस तरह से इसको रोको, तो छोटी छोटी पोखरों का देते कि पोखर बना लो, किस तरह
1: जल को संचय
0: करना। और जो आपका जो पानी जो छत से सारा बहरा है जैसे कुआं है खेत है तो जो पानी उसमें जाए, इस तरह से हम लोग हर जगह
1: जो बारिश का पानी है उसे भी अपन संचय करें।
0: जो अपन बर्तन माज रहे हैं तो तुम्हारे घर में जो बगीचा लगा है ये पानी इसमें डालो, ये बर्बाद नहीं हो। और सूखता गड्ढे बने हैं जैसे जहाँ कच्चे वो है मकान रोड है तो वहाँ सूखते गड्ढे बने हैं तो पानी उसमें जाने दो, इस तरह का हम लोग संदेश देते हैं। और पानी को, क्योंकि पानी की समस्या बहुत बड़ी आने वाली है, पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है।
1: अच्छा मंजुलता जी आप बताइए आपने कैसे जोड़ा लोगों को, कैसे जागरूक किया?
2: पहले तो मैं समूह में जुड़ी और उसके बाद ही फिर हमारे दीदी जाती थी साड़ी पहन के तो मैं देखती थी, तो एक दिन मैंने इनसे पूछ लिया कि आप कहाँ जाती हो ये साड़ी पहन के, तो इन्होंने कहा कि हम संगठन हमारा बना हुआ है पानी का तो हम उसी पर काम करते हैं
1: जी।
2: हमने कहा क्या काम होता है उसमें, कह रही चलो मीटिंग में देखो क्या होता है, तो हम एक बार चले गए इनके साथ तो देखा तो हमें बहुत सही लगा वो कि हम अपने पानी के ऊपर काम करने का जो काम चल रहा है संगठन का वो मुझे बहुत सही लगा। फिर मैंने धीरे धीरे मैं मीटिंगों में जाना चालू करा, कई जानकारियां मिली और इस लेवल तक जानकारी मिल गई कि ये लगने लगा है कि मैं हम लोग किसी और काम को इतना महत्व देते हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए उस पर हम क्यों नहीं इतना गौर करते हैं। तो फिर मैंने बच्चों को समझाना चालू करा धीरे धीरे जुड़ने के बाद कि बच्चों को क्या है कि उन्हें कोई चीज सिखा दो तो उनकी एक आदत होती है कि जिद कर लेना और उस चीज को करा ले जाना।
1: बिल्कुल
2: ये बच्चों के अंदर बहुत अच्छा गुण होता है और अगर उनके अंदर इस अच्छे गुणों को अगर डाल दें और वो इस चीज का जिद करें घर में तो वो सबसे सही काम है। तो हम लोगों ने बच्चों से धीरे धीरे शुरू किया कि बच्चों को जागरूक करें कि हमें पानी को कैसे बचाना है, कितना इस्तेमाल करना है। यही चीज आप घर में जाके मम्मी पापा को बोलिए कि जो आपको गिलास भर के आपने मांगा पानी उन्होंने गिलास भर के दे दिया तो गिलास भर के नहीं लेना है आपको, आप आधा गिलास
1: जितना जरूरत हो उतना पानी को हम उपयोग करें,
2: आपको और पीना है तो फिर और मांग लो आप पानी, लेकिन भर के दे देना और फिर वो फेंक देना वो सही नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोगों ने बच्चों को समझाया, फिर आसपास के लोगों को समझाना चालू किया तो कई लोग जागरूक हो गए हैं और लोगों ने पानी को संचय करना शुरू कर दिया है कि अब हमें इतना नहीं बर्बाद करना है, जितनी जरूरत है उतना लिया, काम हुआ खत्म हो गया फिर हमने उसको भर लिया। तो ऐसे हम लोगों ने गांव गांव जाकर कई महिलाओं को इसी प्रकार से जागरूक किया और गांव अपने घर ही का पानी को कैसे बचाना है उसमें हम लोगों ने काम किया
1: जी।
3: मैंने अभी आप सुन रही थी पुनः प्रसारित संगोष्ठी, विषय था जल संरक्षण के प्रयासों में अग्रणी बुंदेलखंड की जल सहेलियां। वार्ताकार थी रूपाली नाग, बातचीत करी थी उन्होंने मीरा जी से, मीना देवी अहिरवार से, राधा कुशवाहा जी से और मंजुलता जी से। बहुत ही खूबसूरत बात कही इन महिलाओं ने कि हमें जल की बर्बादी रोकनी चाहिए, घरेलू स्तर पर भी यदि हम प्रयास करें तो हम जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। यदि कोशिश हो सके तो अपने घर के आसपास जल संचयन के भी कुछ प्रयास हम अपना सकते हैं। यदि नया घर बनवाने जा रहे हैं, ये आपके घर के सामने नई रोड बन रही है तो वहां पर भी आप संबंधित अधिकारी को बोलकर कि हमारे कॉलोनी में हमारे वहां पर आप जल संचयन की प्रक्रिया के लिए जरूर से कुछ काम कीजिए ताकि जो बारिश का जल है वर्षा जल है वो नालियों में बहकर बर्बाद ना हो। साथ ही साथ बहनों कई बार क्या होता है कि जब हमारे घर में पानी हम भरते हैं पीने का और वो जब दूसरे दिन पुराना हो जाता है तो हम उसको नाली में बहा देते हैं। एक छोटा सा एक प्रयास है, इस पानी को आप सब्जी धोने में, बर्तन धोने में या फिर कपड़े धोने में, या सबसे अच्छा आप इस पानी को, क्योंकि ये पानी तो साफ शुद्ध होता है, इस पानी को आप चाहें तो अपने पेड़ों में भी डाल सकती हैं। यदि गमले लगे हैं आपके यहाँ तो गमलों में डाल सकती हैं, क्यारियों में डाल सकती हैं। चावल यदि हम धोते हैं तो उसका पानी भी हम अपने गमले क्यारियों में आराम से डाल सकते हैं क्योंकि वो भी शुद्ध पानी है। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीजों से बदलाव लाकर हम जल को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। तो बहनों बातें हम आपसे और भी करेंगे लेकिन ले लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
1: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
2: लग जा गले के फिर।
0: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: तेरी मेरी कल आए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मैनु स्वागत है आपका। आइए आपको सुनवाते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म दलाल से। गायक हैं कुमार सानू, साथ में बप्पी लहरी।

मैंने आप सुन रही थी बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म दलाल से, गायक कुमार सानू, साथ में बप्पी लहरी। मैंने बरसात के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे कि डेंगू मलेरिया, साथ ही दूषित पानी से होने वाले संक्रमण जैसे कि टाइफाइड पीलिया, दस्त और वायरल फ्लू का खतरा काफी बढ़ जाता है। इनसे बचने के लिए अपने आसपास किसी भी तरह का कोई पानी जमा ना होने दें। हमेशा उबला फिल्टर किया हुआ पानी पिए और बाहर का खुला हुआ खाना खाने से खुद भी बचें, साथ ही साथ बच्चों को भी मना करें। अपने घर के कूलर गमलों और टायरों में पानी जमा ना होने दें। वैसे तो जहां तक कोशिश करें बहनों कि ये जो सामान आपके यूज का नहीं है उसको छतों पर अपने घर में ना रखें, ताकि खुली खुली जगह रहे और मच्छर और मक्खियों को पनपने की जगह ना मिले और डेंगू और मलेरिया के मच्छर भी वहां पर ना पनप सके। मच्छरों से बचने के लिए आप ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके और घर में मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ बाहर का खुला और सड़क किनारे बिकने वाला खाना और जो कटे हुए फल हैं उनको खाने से भी बचें। साथ ही फ्रिज में रखे हुए खाने को भी ना खाएं, क्योंकि ये भी खाना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। और कटे हुए फल तो बिल्कुल भी ना खाएं। सब्जियां भी यदि सलाद काटा है और उसको फ्रिज में रख दिया है तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें इस मौसम में बैक्टीरिया पनपने का खतरा ज्यादा होता है। कुछ भी खाने से पहले हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें। तो बहनों बातें हम आपसे और भी करते हैं, लेकिन सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत फिल्म पारसमणि से, गायक हैं लता मंगेशकर, साथ में है मोहम्मद रफी।

वो जब याद आए बहुत याद आए, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गीत आप सुन रही हैं, फिल्म पारसमणि, गायक लता मंगेशकर, साथ में मोहम्मद रफी। लेकिन अब हमें याद आ रहा है कि अब हमें स्टूडियो की घड़ी इजाजत नहीं दे रही कि कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, अगले कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है। तो जल्दी से कार्यक्रम का पता नोट कर लीजिए, नारी जगत।

0: कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी पिन कोड 284128। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, उस पे अपने कमेंट्स जरूर दें। साथ ही साथ इजाजत दें प्रत्यंचा को, नमस्कार।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल।
2: कार्यक्रम चौपाल सुनने वाले सबरे किसान भैया बहनों को और पंच भैयन को अपने भैया पवन की नमस्कार। तो देखो भैया रो, जैसी संजय बिड़िया भाई और हम अपन के बीच में आ गए, अपन से बात खाओ करीबी खिलाने। तो आज देखो भैया, हम शुरुआत करते हैं खेती किसानी की, ना शुरुआत करके आज एक देखो भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में देखो अपन शुरुआत करते हैं। कैसे भैया, अपन को बता देवे कि कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल धानी को देखो 12 जुलाई 2026 यानी कि कल उनको देखो 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो उनके निधन के बाद भैया कतर के जो अमीरी दीवान हैं उनके द्वारा निधन की घोषणा करी गई है। उनके सम्मान में भारत सरकार ने देखो भैया 13 जुलाई 2026 को यानी कि भैया आज एक दिना को राष्ट्रीय शोक घोषित करो है। तो भैया अपन सभी जने जनन की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। कैसे भैया, देखो अपनों भी कर्तव्य बैठे थे, अपनों भी होते देखो कर्तव्य के, भैया अपन श्रद्धांजलि देवे। अब देखो भैया बतकाओ अपन आगे करें और कछु, लेकिन बतकाओ करवे के पहले सुना दे कछु संदेश।
3: अरे भैया का करें, जब खेती किसानी में कौन फसलन में कितने पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझ ही में नहीं आऊ।
4: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियां और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियां बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
5: अरे सच में भैया?
4: हाँ बाबू, बिल्कुल सच। हाँ
2: हाँ, तो भैया देखो ये तो सुने अब अपन ने संदेश, और संदेशन के बाद देखो भैया आप कर रहे थे अपन से आगे कछु और बतकाओ। कैसे भैया, अपन देख रहे कि बरसात को मौसम है और हमारे किसान भैया रहे जो खरीफ की बुआई कर रहे हैं, लगभग हमारे किसान भैया ने बुआई कर चुके हुए हैं, जो किसान भैया ने की रह गई है, तो भी किसान भैया ने देखो भी समय से बुआई कर ले। और जब भैया अपन समय से बुआई करा तो तभी अपन को अच्छी फायदा होते, अच्छी अपन की जो फसलें होती हैं वे भी अच्छी अपन को दिखाती हैं। कैसे भैया, पता तो चलो कि अपन ने लेट बुआई करी और बाद में देखो भैया अपनों फायदा की जगह नुकसान हो जाते हैं। तो ये बात को भी हमारे किसान भैया ने ध्यान रखें। और बुआई की जब बात आउत है, फसलन की जब बात आउत है, तो उमें सबसे पहले अपन को एक चीज को ध्यान रखने पड़ते है, पानी को। यानी कि पानी के बिना खेती देखो करबो असंभव है। और अपन जो सभी जने जानत हो कि जो अपनो बुंदेलखंड क्षेत्र है जो देखो पानी के अभाव में रहते है वो, यानी कि भैया बारिश तो होत लेकिन कम बारिश होत, और कम बारिश के संगे संगे हमारे भैया ने देखो पानी अपनी फसलन में लगाउते हैं, अपने घर के लाने भी देखो पानी की जरूरत पड़त है, गाय भैंस अपन पाले हो तो देखो उनके लाने भी पानी की जरूरत पड़त है। तो पानी अपन कहाँ से लेत, भूजल यानी कि नीचे से अपन पानी निकालते हैं। और भैया जब पानी नीचे से अपनों निकलत है तो जो बाटल लेबर है वो देखो नीचे चलो जाता है। जब बाटल लेबर नीचे जाते हैं तो अपन को दुनिया तमाम की देखो परेशानी अभी हो रही है और आगे चल के को भैया ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो इक लाने हम अपन को बता देवे कि अपन को एक बात को विशेष ध्यान रखने के पानी की अपन को बचत करने हैं। और एक चीज और हम अपन को बता दें, एक अभियान है केंदा रेन, बूंद बूंद का संचय। यानी कि जो भी अपनो पानी है, जैसे कि हम अपन से शुरू में बतकाओ कर रहे कि बरसात को मौसम चल रहा, और बरसात के मौसम में अगर अपन को भूजल स्तर अपनों बढ़ाने हैं, पानी को मात्रा अपन को कम नहीं होने देने, तो जो बरसात के

0: पानी को अपन को रोकने हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कि भैया अपन को हम बता दें कि जो अपने घर हैं, सरकारी कार्यालय हैं, व्यवसाय हैं, इमारतें हैं, छतें हैं, जितने भी जो बरसात को पानी आ रहा हो, वो पानी को भैया अपन एक पाइप से लेके, पाइप की लेंथ से लेके अपन जो जमीन है, धरती है, ऊके अंदर तक ले जा सकते हैं। ऊके लाने देखो भैया अपन टैंक भी बना सकते हैं, सोखता अपन गड्ढा भी खोद सकते हैं, जितने अपन पानी इकट्ठा कर सकते हो। यानी कि घर को पानी हुए चाहे भैया खेत को पानी हुए, अपन को बर्बाद नहीं होने देने। अपन को ऐसो नहीं है कि ते बरसो और बहके चलोगो, तो उससे देखो भैया अपनों फायदा कछु नहीं है, नुकसान ही अपन को है। और अपन देख जा रहे हैं कि पानी की कमी देखो बहुत हो जा रही है, तो अपन छतन के पानी अनुखो भी, जो छत को पानी है ऊखों भी अपन संरक्षित कर सकते हैं। पाइपलाइन ला रो और जितनों भी अपनों पानी इकट्ठो है वो एक नए से गड्ढा बनाओ, टैंक बना लो या सूखता गड्ढा बनाओ, उनमें इकट्ठो अपन कर सकते हैं। और भैया अगर अपन जल निकाल रहे, यानी कि पानी जो अपन ले रहे हैं उसकी सफाई भी बहुत जरूरी है। कैसे भैया, जो अपने तालाब हो, कुआ हो, बावड़ियां हैं, जो भी अपन के हैं, उतन से जब अपन पानी निकालत हो तो अपन वो अपने लाने भी यूज करत हो, तो एक लाने का हो तो जो जल ग्रहण को क्षेत्र होते वो कम हो जाते। तो जो भी अपन को ध्यान रखने हैं, तो हम अपन को वही बता रहे थे कि भूजल जो रिचार्ज होता है, यानी कि पानी जो अपन नीचे से निकालत है, उखो जाकोता कर भी खिलाने अपन को का करने है कि जो बड़े बोरवेल है जो भैया अपने खराब हैंगे, उनको अपन का कर सकते हैं कि रिचार्ज यानी कि पुनर्भरण अपन उनको कर सकते हैं। यानी कि अब उनमें पानी है नहीं या पानी उनमें से निकल नहीं रहो, भूजल स्तर अपनों नीचे चलोगे, तो जो भी अपनों बरसात को पानी है अपने बोर है तो उनमें अपन पानी डाल सकते हैं। जब उनमें पानी बरसात को जो है तो जो अपनों भूजल को स्तर है वो अपनों बढ़ जाए, और जब जमीन के अंदर भैया पानी जो है, धरती के अंदर पानी जो है, तो अपन को अमूमन बिल्कुल अच्छी बात है कि अपनों जल स्तर जरूर बढ़े। इसके संगे संगे हमारे किसान भैया ने देखो चेक डैम को भी निर्माण कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकन में अपन देखा थे कि बरसात को जो पानी होता है वो एकदम बहुत चलो यार, नरवन भरकन में हो, नालियन में हो, चलो यार, तो इके लाने अपन छोटे छोटे चेक डैम भी बना सकते हैं। और जब चेक डैम बना होता तो देखो तभी पानी रुकते, और चेक डैम देखो हमारे किसान भैया के खेतन पे बनाते हैं, और जब खेतन पे चेक डैम बनाते हैं तो पानी तो रुकते ही है, और ऊके संगे संगे जो खेत की जो खरा अपनी अच्छी मट्टी हो बा भी नहीं बहुत है, तो ऊ तरीका से भी अपन पानी को रोक सकते हैं। और भैया एक चीज और हम अपन को बता देंगे कि बूंद बूंद संचय को मतलब जो ही हो कि जो अपनो पानी है, पानी को एक बूंद अपन को बर्बाद नहीं होने देने, जितनों भी पानी अपन बरस रहो वो बिल्कुल अपन को पूरे प्रयोग में लेने हैं। चाहे भैया अपन खेत तालाब हुए या अपने भैया खेत तालाब नहीं है, तो जिन किसान भैया की अभी ऐसी खाली खेत है तो भी अपने भैया देखो मेड़बंदी भी कर सकते हैं, और जब मेड़बंदी करो तो देखो भैया पानी अपन को रोकने हैं, जब मेड़बंदी भी करो तो भी अपने खेत में पानी रुक जाते, और जब अपने खेत तालाब है तो देखो भैया उम्मीद भी अपन को नुकसान तो होता नहीं है। एक तो देखो भूजल स्तर भी बढ़ते है, और उसके संगे संगे जब अपन के खेत तालाब है और नैया तो हमारे किसान भैया देखो करवाऊ भी है, तो जब खेत तालाब होंगे तो उसमें भी देखो अपन पानी को रोक लेते हैं, और जब पानी रोका थे तो भूजल स्तर बढ़वो बहुत ही जरूरी है, और जरूरी का भैया वो तो बढ़े ही बढ़े। तो ई बात को भी हमारे सभी भैया ने विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अपन को भूजल स्तर बढ़ाने हैं तो बूंद बूंद पानी को अपन को संचय करने हैं, यानी कि रोकने हैं, यानी कि भैया एक बूंद पानी अपन को बर्बाद नहीं होने देने। और देखो भैया जैसी अपन बतकाव कर रहे थे वैसी एक अपन को वो भी सुनवा रहे, यानी कि भैया अपन को एक भेंट वार्ता सुनवा रहे, ब्लॉक घोषणाएं ग्राम एटोरा के कृषकन से वर्षा जल संचय प्रक्रिया एवं लाभ विषय पर संतोष पाल की बातचीत। तो भैया देखो वे भी सुनो, वे किसान भैया ने कैसे बता रहे कि कैसे अपन को पानी रोकने हैं और कौन तरीका से अपन भूजल स्तर बढ़ा सकते हैं।
1: श्रोताओं स्वीकारो संतोष पाल का नमस्कार। हाँ तो श्रोताओं, आज हम पहुंचे घुड़साए ब्लॉक के इटोरा गांव, जो कि घुड़साए मऊरानीपुर रोड पर गड़वार गांव से सड़क जाती है और 2-3 किलोमीटर अंदर पड़ता है। तो वहां पर पहुंचे और हमने कुछ किसान भाइयों से, कुछ जागरूक भैया से बातचीत करी, और चलो उनसे आपके भी मिलवाते हैं, रूबरू कराते हैं। नमस्कार भैया।
2: नमस्कार।
1: आपको शुभ नाम का है?
2: मेरा नाम रौनक यादव है।
1: और आप इसी गांव इटोरा गांव के निवासी?
2: हाँ हाँ, मैं इटोरा गांव का निवासी हूँ, यहीं पे रहता हूँ।
1: अच्छा, तो आप का कक्षण कर रहे हैं?
2: देखो भैया, हम और हमारे पापा खेती किसानी करते हैं, तो उनका साथ में हाथ भी बटाते हैं और थोड़ी सी अपन पढ़ाई भी जारी करे हुए हैं।
1: कोई भी काम करो बाकी लाना शिक्षित हो वो बहुत जरूरी है। तो रौनक जी, आप जैसे आप खेती किसानी से भी जुड़े, आपके घर परिवार में मुख्य पेशा धंधा व्यवसाय खेती किसानी है, तो खेती किसानी से जब हम जमीन जुड़े रहते हैं

0: तो हमें इसकी पूरी जानकारी लगभग होनी चाहिए। बरसात के पानी के संरक्षण करने का कुछ प्रबंध करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, शब्द आपने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसे आप क्या समझते हैं?
1: जहाँ तक मैंने सुना है और मैं अपनी भाषा में यही बोल सकता हूँ दो लाइनों में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में, और हमें इस पानी को संरक्षित करके रखना है।
0: बिल्कुल रौनक जी, सही बात कही कि बरसात के पानी का संरक्षण करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो आपने अभी इस समय अपने चाहे घर में हो या खेत पर हो गाँव में हो, तो बरसात के पानी को संरक्षित करने के क्या उपाय कर रखे हैं, क्या योजनाएं बना रखी हैं आपने?
1: देखो, हमने जहाँ तक अपने पापा को देखा है खेत में काम करते हुए, उनके साथ मैं भी खेत में जाता हूँ, तो जब वो पानी लगाते हैं तो हमारे खेत में चारों तरह की थोड़ी ऊंचाई से मेड़ें डली हुई हैं, तो खेत का पानी खेत में रह जाता है। और हमने अपने जैसे घर का पानी घर में होता है, तो हमें अपने घरों पर छोटी सी टंकियां बनानी चाहिए। जहां से हमने देखा है, थोड़ा पढ़ाई से सीखा है कि तमिलनाडु में लोग लौटते हुए मानसून में टंकियां बना लेते हैं, वहाँ पानी का संरक्षण करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए आने वाले समय में पानी बहुत ही कम हो जाएगा, तो पानी एकत्र करने के लिए हमें घरों में टंकी बनानी चाहिए और अपने घर के आंगन में जो अपने खेत खलियान या बेड़ा डले रहते हैं उसमें एक गड्ढा खोदकर सोखता बनाना चाहिए, जिससे हम पानी को एकत्र कर सके और अपने घर का जो पानी वेस्ट होता है या जो छत का पानी होता है वो उस गड्ढे में डाल देना चाहिए, जिससे उसमें पानी सोखता रहे और आने वाले समय में हमें उसका यूज कर सके।
0: यानी कि सोखता बनाते हैं तो उसका पानी उपयोग करने का मतलब है कि वो सोख करके अपने घर में जो जिससे आप स्रोत है पानी निकालने का, जैसे चाहे कुआ हो या देखो हैंडपंप लगा हो, तो बोर होता है तो वो बोर में पानी पहुंचता रहता है, रिचार्ज होता रहता है, इस तरह से हम उस पानी को उपयोग कर लेते हैं। अच्छा, अब आप बताओ कि जैसे आपने कहा कि ये सोखता बनवा लेते हैं, तो सोखता आपने बनवा रखा है क्या? सोखता आप दूसरे जो श्रोता भैया आ रहे हैं, किसान भैया आ रहे हैं, वे इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कैसे इस सोखता को हम बना सकते हैं? जैसे अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में जिसे हम बोलते हैं, तो शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि जमीन का अभाव रहता है, यानी कि कम जमीन में ही लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सोखता वो कहाँ बनाए? सोचते हैं कि यहाँ पर हम सोखता बनवाते हैं, उतने में हमारा एक कमरा या किचन या बाथरूम निकल आती है, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें उन भाइयों से क्या आशा कर सकते हैं कि जिससे कि वो भी बरसात के पानी का संरक्षण करें? शहरी क्षेत्र में देखते हैं कि थोड़ी बहुत आगे अपने घर के आगे जमीन होती है, अगर 5 फुट ही जमीन है, 5 फुट
1: जमीन है, तो उसमें हमें एक गड्ढा खोद सकते हैं, 5 फुट गहरा होना चाहिए और 5 फुट उसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, तो उसमें अपन लकड़ी टुकड़े डाल के और ईंटें डाल के उसको उसमें थोड़ा सा कोयले और बालू की
0: परत लगाते चले जाते हैं, परत दर परत इस तरह से उस गड्ढे को पूरा भर देते हैं। अब वो गड्ढा देखो उबड़ खाबड़ नहीं दिखाई दे, इसके लिए क्या करते हैं कि या तो आप पत्थर की जो चट्टाने आती हैं उनसे पाट सकते हैं, या फिर अपन उसकी छत नुमा उस पर कंक्रीट का एक प्लास्टर करा सकते हैं, जिससे कि वो बेकार भी नहीं दिखाई दे और अपना काम भी हो जाए। सोताओ, अब हमारे बीच में और भी किसान भैया आ रहे हैं, तो उनसे भी बतकाओ करत और उनसे भी पूछत रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। नमस्कार भैया।
2: नमस्कार।
0: आपको शुभ नाम क्या है?
2: सर, मेरा नाम मनीष कुमार है।
0: किस गांव के निवासी है? हम देख रहे हैं कि यहाँ इटौरा गांव में खड़े, तो इसी गांव के?
2: मैं इसी गांव का हूँ, इटौरा गांव का।
0: मनीष जी, आप एक बात बताएं कि जैसे हमने चर्चा की कि रेन वाटर हार्वेस्ट यानी कि बरसात के पानी का संरक्षण, तो बरसात के पानी का संरक्षण की तो आपने देखा कि कैसे करते हैं, रौनक जी ने बताया जी। अब आप ये बताएं कि बरसात के पानी के संरक्षण से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, जिससे कि हमें बरसात के पानी को संरक्षित करके रखना चाहिए?
2: बरसात के पानी से ऐसा होता है कि जो बोर वगैरह हैं वो उसमें मतलब जो सोखता उतार रहे थे रौनक भाई हमारे, कि जो सोखता हैं उनके जरिए पानी जाता है और हमारे बोर में मतलब पानी पहुंचता है, उसी से मतलब जैसे मोटर वगैरह डालते हैं या हेडपम्प लगाते हैं, तो उससे मतलब जो पानी की है वो कमी नहीं होती है और उससे पानी मतलब उसके मतलब सोख स्तर बना रहता है।
0: हाँ, तो मनीष जी, बरसात के पानी के संरक्षण से हम सबको कितना लाभ हो सकता है?
2: हम सबको लाभ देखो ऐसा है कि जैसे हमारा खेत है और मतलब मेरे खेत में बंदिया है, ठीक है, बंदिया है और हमारे खेत में भराव है, मेरे खेत में वो मतलब भराव हो जाएगा, और इसके अलावा और जैसे दूसरे का खेत जैसे नीचे है हमारी बंदी आगे, तो जैसे मेरा खेत भरेगा तो उसके मतलब खेत में

0: रिसाव आएगा तो उसका मतलब काम जो देरी से आएगा तो हाँ फसल देर से हो पाएगा।
1: वैसे और कोई दुष्परिणाम निकल के नहीं आती हैं, लेकिन ये तो कॉमन बात है। देखो उसकी खेत में भी नमी बनी रहेगी और उसकी भी फसल के लिए देखो पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी, दूसरे किसान भैया के खेत में भी देखो अच्छी फसल लहलहाएगी। और एक चीज और होती है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, देखो बड़े पैमाने पर भी अपन देखते हैं कि कई एक नदियों पर डैम बनाए जाते हैं, है? हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ भी ये ऊपर की ओर बड़वार गांव से जब हम आ रहे थे तो बड़ा बंदा तला मिला था, तो तला से नीचे हम देखा कि अपने गांव की ओर रास्ते में एक नहर भी मिली थी, तो नहर का पानी आता है, तो उस बंधा को बनाने से अब लाभ क्या मिला कि आपके क्षेत्र के भी किसानों के खेतों में जो फसल खड़ी होती है उसकी भी सिंचाई इस नहर के माध्यम से हो जाती है। तो ऐसी आपने क्या योजनाएं बनाए रखी और का अपन और किसान भैया से क्या वो चाह रहे हैं कि देखो बरसात का पानी कितनों कीमती है, हमें ऐसे ही नहीं देखो इन्हें नदियन में या नरवन में बह के निकल जान देने, ठीक है अपन खैर रोक के रखने जिससे कि भविष्य में वो अपने काम में आए, तो अपन का क्या वो चाहते हैं?
0: जैसे कि जो मतलब उस पानी से जो मतलब बरसात का पानी है उस पानी बरसात के पानी को रोक के इसलिए मतलब रखना चाहिए, जैसे कि पशु है जैसे भेड़ बकरियां हैं अपनी
1: बिल्कुल
0: उनको लेके जाना है,
1: जंगली पशु हैं आप देखो जंगल में इस समय पानी की व्यवस्था
0: नहीं होती है, पेड़ सूखते हैं,
1: पशु ठहरे वो चल नहीं सकते कि हमें प्यास लगी
0: ना, उनके खाने पीने का व्यवस्था हो पाती है, इस पानी को रोकने से ये होता है कि मतलब पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं और मतलब पर्यावरण भी साफ सुथरा रहता है, हैं और जैसे वो भैंस हैं जैसे गाय हैं कई तमाम जानवर हैं उनको भी मतलब पानी पीने की व्यवस्था हो जाती है, खान पीने की व्यवस्था हो जाती है, हैं और
1: अपने पास खेती किसानी लगभग कितनी है मनीष जी?
0: खेती किसानी 8-10 बीघा के लगभग है।
1: अच्छा तो देखो आज के समय में एक परिवार का भरण पोषण 8-10 बीघा में बहुत अच्छी तरह से हो सकता है,
0: हो सकता है
1: अगर उससे हम देखो वैज्ञानिक तरीके से और अच्छी तरीके से करें तो, है जैसे कि हम कुछ लागत को कम करके, जैसे कि हम और आप आज के समय में ज्यादातर रासायनिक खेती की ओर भाग रहे हैं, रासायनिक खाद हो रासायनिक दवाई हो कितने महंगे आते हैं बाजार में, लेकिन हम और आप कभी नहीं सोचते कि हम जैविक खेती की ओर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होता है, जैसे जैविक खाद ले लो, हम और आप गाय भैंस पालते हैं तो गोबर निकलता है उनका मलमूत्र होता है, हमारी देखो रसोई घर से जो गोबर के उपलों से जो हम खाना पकाते हैं कंडों से तो उनकी राख चूल्हे की निकलती है तो वो भी एकत्रित करके रखते हैं, और हमारे जो घर में रसोई घर में देखो सब्जियों के छिलके होते हैं वो भी एकत्रित अपन एक घूरे पे डालते हैं, और दूसरी चीज अपने फसल के अवशेष होते हैं जैसे अपन अपने किसी भी फसल की थ्रेसिंग करके ला तो गांठ है वहीं बागो कूड़ा कचरा भाव फटक के छांट बीन करके जो कचरा निकला था अपन वाघ है घूरे पे डाल लिया, तो जब वो चौमास लगते ही और बरसात को मौसम आता ही तो वह गड्ढा में डाल देते ही तो वहां पानी भर जाते तो वो सब कूड़ा कचरा गोबर सब इकट्ठो सड़ जाते ही तो वो बिल्कुल जैविक खाद को काम कर
0: मई जून के आसपास इसको अपने खेतों में अपना फैला देते हैं।
1: और मनीष जी कई किसान भैया ने बताने लगा कि अगर हमने अपनी खेत में गोबर खाद डाली जैविक खाद डाली तो लगभग 3 साल बहुत अच्छी पैदावार मिला तू खेत से, तो अपन ने कहा ऐसा कुछ अनुभव करोगे डारवे के बाद?
0: हाँ किया है मैंने तो अभी भी डाला है और मेरी मतलब मैंने सड़ाया था वो 4 ट्रॉली होगा मेरा तो मैंने अपने खेतों में डाल दिया है, हर साल हम लोग डाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं।
1: हाँ तो मनीष जी और आप क्या कहना चाहते हैं कि जो वर्षा का जल संचयन होता है तो इससे और भी क्या लाभ हो सकते हैं?
0: जी जो वर्षा जल संचय होता है इसकी पूर्ति भूजल के मतलब दौरान करते हैं और की जाती है, मतलब जिससे भूजल से वर्षा जल संचय होता है, प्राणियों के उपयोग से जैसे कि वर्षा जल एकत्र करने से कुछ निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना को कम करने में वर्षा जल की जो
1: मदद मिलती है। हाँ बिल्कुल अपन ने सही कहा कि अगर अपन मेड़बंदी कर दें या डैम बनवाने तो जो निचले इलाकन में अपने पानी बहके जल्दी इकट्ठे हो जाते तो बाढ़ जैसी हालत बन जाती, लेकिन जब डैम बनी हुई है या मेड़बंदी हुई है तो वो पानी रोक रोक के जाते ही और भर भर के जाते ही, तो ऐसी स्थिति में उतने भर बाढ़ की खतरा कम हो जाता है और अपने यहाँ देखो बरसात के पानी को संरक्षण भी हो जाता है।
0: जैसे कि जो मतलब इससे एकत्रित करने से जल को जल संरक्षण के आपके पीने के पानी की गुणवत्ता में सुधार मतलब लाता है।
1: हाँ तो किसान भैया, हमारे बीच में एक और किसान भैया आ रहे हैं, चलो उनसे बतकाव करत।

0: नमस्कार भैया।
1: नमस्कार भैया,
0: आपको शुभ नाम का है?
1: देवेंद्र कुमार।
0: अच्छा देवेंद्र जी, तो अपन देखत के अपने जो बरसात होते ही चौमासी में बरसात होने लगा, झला झिंकरी होने लगा, तो वो पानी के रोक बे की अपन का कछु व्यवस्था करें, अपने खेत को पानी खेत में कैसे करें?
1: ट्रैक्टर उठाओ तो अपने मट्टी तो मेड़ा बनाओ पानी नहीं कर पाते।
0: अच्छा, तो जब पानी के रोक बे से का कछु लाभ होते ही?
1: लाभ होते के माने के पानी नहीं कर पाओ फसल सही होती।
0: अच्छे अपने खेतन की जो उपजाऊ माटी होती है ऊपरी परत बाके नहीं कर पाते, अच्छी उपज देते ही जो अपन ने अनुभव करो, तो अपन इस तरह से बरसात के पानी को संरक्षण करत
1: करत।
0: हाँ तो किसान भैया, फिर से हम रौनक जी के पास पहुँचते हैं और उनसे बरसात के पानी के देखो जो लाभ होते ही और हानियां होती और उसके बारे में बातचीत करते हैं। रौनक जी बताओ, बरसात के पानी के संरक्षण से और क्या क्या लाभ हो सकते हैं?
2: हम इसमें एक बात और कहना चाहते हैं कि सरकार द्वारा भी एक वर्षा जल संचयन योजना भी चलाई जा रही है।
0: बिल्कुल,
2: हमें उस योजना को समझना चाहिए और अपने किसान मित्र से एक ही आग्रह है कि इस योजना को समझें। इस योजना में हमें यही बताया गया है कि हम अपने संग्रहित जल को कैसे करें, टंकियां बनाएं, इसमें सरकार भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है, उसका लाभ उठाएं। दोनों चीजों को ध्यान में रखना है कि गर्मी को भी संतुलन करना है और अपना भूमि जल को भी अपन को वापस लौटाना है।
0: रौनक जी, ये चीजें जब ही संभव है, जब अपनी धरा जा हरी भरी दिखे,
2: हरी
0: भरी देखो बिना पानी की संभव नहीं है।
2: नहीं,
0: तो अगर पानी हुई है तो पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे हो गए जो तापमान ग्लोबल वार्मिंग बोलत जी है अपन, या दिन प्रतिदिन बढ़त जा रही तो जा में भी कछु गिरावट हुई है। हाँ। अपन घर राहत मिले, ठंडक मिले।
2: हाँ। तो इस बात पे एक बच्ची की बात ध्यान आज किसान भैया सुनना, अपने जो छोटे अपने नाती नाता होते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि जल ही जीवन है। तो इसका महत्व हम लोगों को किसान भाइयों को समझना चाहिए और हमारी जो पूर्वजों ने जमीन दी है उसका संवर्धन एवं संरक्षण करके रखना है।
0: बिल्कुल, रौनक जी और मनीष जी और देवेंद्र कुमार जी, आप तीनों जनों ने वर्षा जल संचयन पे इतनी अच्छी जानकारी दी और आशा है कि आप लोग इन सब चीजों को गतिविधियों को दूसरे भैयान के बताएंगे और उन्हें भी प्रेरित करेंगे कि बरसात को जो पानी है उन्हें ऐसी बहके नहीं निकलना देने, बाकी रोक के रखने जिससे अपने का भविष्य में फायदा मिले। तो अपन तीनों जन ने अपना कीमती समय निकाल के वर्षा जल संचयन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, आप तीनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हाँ तो भैया देखो, जो तो सुनी अभी अपन ने भेंट वार्ता ब्लॉक गुरसनाए ग्राम इटोरा के कृषकन से वर्षा जल संचय प्रक्रिया एवं लाभ विषय पे संतोष पाल की बातचीत। तो देखो भैया, वही हम भी बतका कर रहे थे अपन से, उसी देखो अपन को देखो हमने भेंट वार्ता भी सुनवाई कि कौन तरीका से अपन जल संचय कर सकते हैं और जब अपन पानी रोक दे तो जो अपनी फसलन को फायदा करते हो, जब अपनी फसलें फायदे होते जब अपन को भी देखो भैया फायदा होते। और कहना भैया बतकाओ आगे करीब के पहले सुनवा दे कुंदा सो अपन को ऐसे ही लोकगीत, तो अपन को सुनवा रहे ऐसे भैया जीवन के सुख पाने और गावे वाले कलाकार भैया हैं हरिगम कुशवाहा। तो देखो भैया जो उमदासो लोकगीत भी अपन सुन लेवे।
4: ओ जीवन को सुख पाने भैया पानी अपो बचाने, के जीवन को सुख पाने भैया पानी अपो बचाने, ओ पाछे नई पछताने भैया पानी अपो बचाने। काय बचाने? के जीवन को आधार है पानी, जीवन को आधार है पानी, ओ कुदरत को उपहार है पानी,

कलकाने भैया पानी अपो बचाने, ओ जीवन को सुख पाने भैया पानी अपो बचाने। के पानी जो पूरो कल जे है, पानी जो पूरो कल जे है, फसल तुमाई मुरझा जे है। अगर आपने समय से पहले पानी को का बंदोबस्त नहीं किया, पानी को रोक के नहीं रखा, संरक्षण नहीं किया, तो आपकी फसल भी मुरझा सकती है। इसलिए कहना है कि पानी

0: बचाने, जीवन को सुख पाने, भैया पानी अपो बचाने। आगे क्या क्या करना है आपको, तुम बोरिंग करवा लो, यदि कुआं वगैरह नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो बोरिंग करवा लो, तुम बोरिंग करवा लो और कुआं पुरानो साफ करा लो, स्प्रिंकलर सिस्टम लगवा लो और खेत हरे भरे चाने, हाँ खेत हरे भरे चाने, भैया पानी अपाओ बचाने, जीवन को सुख पाने, भैया पानी अपाओ बचाने। जाके बाद के खूब लगाओ भटा भटैया, उपजालो लौकिया तुरैया, आलू रत आलू बाघुइया, ओ धान जो तुम खो बुआने, हाँ धान जो तुम खो बुआने, भैया पानी अपो बचाने, ओ जीवन को सुख पाने, भैया पानी अपो बचाने, पाछे नहीं पछताने, भैया पानी अपो बचाने, जीवन को सुख पाने, भैया पानी अपो बचाने। जाके बाद के खूब लगाओ भटा भटैया, उपजालो लौकिया तुरैया, आलू रत आलू बाघुइया, ओ धान जो तुम खो बुआने, हाँ धान जो तुम खो बुआने, भैया पानी अपो बचाने, ओ जीवन को सुख पाने, भैया पानी अपो बचाने, पाछे नहीं पछताने, भैया पानी अपो बचाने,
1: पानी अपनो बचाने। देखो भैया कितनो उम्दा अपन ने जो लोकगीत सुनो, और गावे वाली कलाकार भैया हती हरिओम कुशवाहा। और देखो भैया जब पानी की बात आउत है, और पानी तो देखो फायदा भी करत है और पानी कभी कभी नुकसान भी करत है। नुकसान का करत है जो भी देखो हम अपन को बता देवे। अगर हमारे किसान भैया ने देखो पशुपालन करे हैं, और पशुपालन को अगर अपन अच्छी तरह से प्रबंधन नहीं करते हैं बरसात के मौसम में, तो जो पानी देखो नुकसान शुरू कर जाते हैं। कैसे भैया, अगर पशुशाला के जो आसपास पानी इकट्ठा होने लगत तो इसे कहा होता कि देखो भैया एक तो मच्छर बढ़ जाते, मक्खियाँ बढ़ जाती, और जो मच्छर होते हैं उनको प्रजनन जो शक्ति होते हैं वह भी बढ़ जाते हैं। अब जब भैया जी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे कहा होता कि अपने जानवरों को भी नुकसान कर दें और अपन को भी नुकसान कर दें। तो इस चीज़ को अपन को विशेष तौर पर ध्यान रखने कि जल भराव अपन को जितने अपन पशुशाला बनाए हैं उतने नहीं होने देने। और भैया देखो गोबर के निस्तारण की बात करें तो पशु से जो मलमूत्र निकलते यानी कि गोबर जो निकलते है उखो देखो नियमित रूप से साफ करने हैं, और पशुशाला से कछु दूर पे जाके गड्ढा अपन बना ले उनमें अपन को वो डालने हैं, जिससे भैया देखो दूर भी रहे और अपन को जो गोबर होते हुए खाद भी बन जाए, और नमी को भी विशेष तौर पर ध्यान रखने का। कैसे भैया पशुशाला में अगर नमी रहे, जो फर्श है उनमें नमी रहे, तो देखो वो भी अपन को नुकसान कराते, अपने जानवर को नुकसान कराते, तो इसको भी ध्यान रखने। और भैया हवा को भी विशेष तौर पर ध्यान रखने, जो अपनी पशुशाला है वो तो देखो पर्याप्त मात्रा में देखो खिड़की दरवाजे हो वो जरूरी है, रोशनदान हो वो जरूरी है, जिससे भैया हवा के संगे संगे जो धूप है जो घाम है वो भी अपने जानवरों को अच्छी तरह से लगा दराब है। और देखो एक चीज और हम बता देंगे कि प्राकृतिक तरीका से अपन घरेलू कछु उपाय कर सकते हैं मच्छरन के लाने, मक्खियन के लाने, तो नीम को धुआं अपन शाम के समय रख सकते हैं, सूखी नीम की जो पत्ती होती है उनमें कपूर को अपन जा डाल देवे जिससे वो आग लग जाए और धुआं होने लगे, सो जिसे मच्छर जो मक्खियाँ होती वे दूर हो जाती हैं। नीम तेल को अपन स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे भैया नीम की पत्तियां हैं, तुलसी है, कपूर है, पानी है, इनको सबको उबाल के अपन इकट्ठो करके इनको भी अपन कर सकते हैं इस्तेमाल पशुगन के लाने, जो जितने अपन को नुकसान ना हो पावे। देखो ये घड़ी इजाजत नहीं दे रही कि अपन से कछु और बतकाव करें आगे, तो कार्यक्रम अपन को कैसो लगा चिड़िया पतिया लिखे भी लिख लू कार्यक्रम को पतो, कार्यक्रम चौपाल द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी पिन कोड 284128 एक संगे अपने

0: यह पवन कुंद वाग्य नमस्कार।
1: किसान श्रोता सुन रहे थे अभी कार्यक्रम चौपाल एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब सुने गुमशुदा की सूचना। गुमशुदा का नाम है अनुष्कान, पुत्री भगवान दास, निवासी ग्राम रक्सा गुमनावारा, रक्सा जिला झांसी से। इनकी उम्र है लगभग 16 वर्ष। शारीरिक बनावट गोरा रंग है और गोल चेहरा है। ये 5 जुलाई सन 2024 से लापता है। श्रोताओं इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी को सूचित करें, उन्हें संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। श्रोताओं अब सुनते हैं आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक झलक।

6:35 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण करेंगे 7:18 पर। स्वास्थ्य वार्ता आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले की जाएगी 7:30 पर। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की, इसे आप सुन सकेंगे 7:45 पर। आठ बजकर पंद्रह मिनट पर होगा फिल्म संगीत।

समाचार संध्या का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर और उसके बाद 9 बजे होंगे अंग्रेजी में समाचार।

फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी। इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11:00 आकाशवाणी दिल्ली से होंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है नए पुराने गीत सुहाने कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म उमराव जान की इस गणेश वंदना के साथ।

उमराव जान फिल्म से अभी आप सुन रहे थे इस पारंपरिक गणेश वंदना को। संगीत बद किया खयाम ने, स्वर था उस्ताद गुलाम मुस्तफा, शाहिदा खान और साथियों का। और आइए अब सुनते हैं अगले गीत में मन्ना डे और साथियों को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म का नाम अनुरोध।

मुकेश का गाया हुआ फिल्म कटी पतंग से अभी ये गीत साहब सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए दीपाली साठे की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म से ये गीत।

0: दुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: काय भैया कछु अनमने दिखा रहे का बात है?
3: भैया एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
2: अपन को भैया पता नहीं है आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
3: हेलो किसान फोन इन झोंका है भैया?
2: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उसको समाधान करवे के लाने बैठे है विशेषज्ञ भैया।
3: कैसे पाए समस्या को समाधान?
2: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
3: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
2: फोन नंबर है 0510-232-0068।
3: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अब ना होए हमारे किसान भैया परेशान।

महेंद्र कपूर की आवाज में सुन रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना, बोल लिखे थे संतोष आनंद ने। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज को फिल्म रजिया सुल्तान से।

नए पुराने गीत सुहाने श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत फिल्म रजिया सुल्तान से अभी आपने सुना। और लीजिए अब सुनिए राकेश पंडित और सहेल हाड़ा का गाया हुआ ये गीत फिल्म गुजारिश से।

गुजारिश फिल्म से भी आपने सुना ये गीत शैलहाड़ा और राकेश पंडित का गाया हुआ। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शबीर कुमार और साथियों का गाया हुआ फिल्म तेजाब से।

जावेद अख्तर के लिखे हुए इस गाने को हमने लिया था फिल्म तेजाब से। आवाजें थी नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शबीर कुमार व साथियों की। श्रोताओं, उसी के साथ ही कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने अब यहीं समाप्त हुआ। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:19 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से रिले प्रादेशिक समाचार।

0: अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
0: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ, कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा, 40 से 45 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज उन्नाव में 4,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लखनऊ हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग के 32 किलोमीटर के एक खंड का लोकार्पण और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनने जा रहे 4 लेन वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश बेहतरीन सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के लिए अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
1: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद है लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है।
0: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजधानी लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ कानून व्यवस्था के चलते प्रदेश में कई बड़े निवेश आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में धरातल पर देखने को मिलेंगे।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं और वहां जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में प्रदेश में 5 लाख करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा।
1: 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली और आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं और हमारा देश का उत्तर प्रदेश एक प्रकार से हमारे देश का हृदय है। अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, एक्सपोर्ट यहाँ से ज्यादा होगा तो हिन्दुस्तान की भी तरक्की होने वाली है।
0: आधुनिक सुविधाओं से लैस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कल से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। पेश एक रिपोर्ट।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर टोल 275 रुपए होगा और इस पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मेडिकल रिसर्च में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

0: उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाना भी है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि एसेसिबल, एफोर्डेबल, एफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी

0: भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने एसआईटी की संरचना का विवरण भी मांगा है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। उधर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। अब आरोपियों की पेशी 27 जुलाई को होगी। वहीं एसआईटी ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब एक घंटे तक पूछताछ की। संतोष दुबे ने बताया कि एसआईटी ने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे हैं जो उन्होंने एसआईटी को सौंप दिए हैं।
1: एसआईटी के सम्मानित सदस्यों ने, अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हमारा पक्ष जाना अपेक्षा की कि और भी कुछ आपके पास हो तो हम तक उपलब्ध करें। जो बातें उन्होंने हमसे पूछा मैंने उनको पूरा जो हमने देखा सुना जाना समझा वो सब बताया।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी आज दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची। ये समिति विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों और विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर मंथन करने के लिए राज्य के दौरे पर है। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज समिति ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बैंकर्स और वकीलों से विचार विमर्श किया। कल सुबह ये समिति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके विचार जाने की।
2: कल सुबह जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल हैं, इन सब के क्या विचार हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अगर एक समय पर दोनों चुनाव विधानसभा लोकसभा के होते हैं तो उससे बहुत सारी चीजों पर फर्क पड़ता है। विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी एक राज्य के चुनाव, कभी दूसरे राज्य के चुनाव, तो इन सबसे मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन अभी देखना यह है कि अलग अलग दलों के इस पे क्या विचार है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवादों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए हैं। ये विशेष अदालत 21 से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होगी। कार्यवाही से पहले इन मामलों से जुड़े पक्षों को लोक अदालत से पहले होने वाली सुलह वार्ता में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ज्ञानवापी मामले में मंगलवार को वाराणसी के जिला और सत्र न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में प्रस्तावित है। इसमें ज्ञानवापी से जुड़े विभिन्न वादों के पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। ज्ञानवापी मामले से जुड़े अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि अगर मध्यस्थता से कोई समाधान नहीं निकलता तो मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। कल से आम नागरिक कर सकेंगे यात्रा। 40 से 50 मिनट में तय होगा दोनों शहरों का सफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति दो दिवसीय दौरे पर पहुंची लखनऊ। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया विमर्श, कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: चाहिए
4: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स और मेंटल हेल्थ, इस विषय पर डॉक्टर दिनकर कुलश्रेष्ठ से की गई देवाशीष की बातचीत।
1: स्वास्थ्य वार्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को देवाशीष का नमस्कार। श्रोताओं, हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें। शारीरिक रूप से जब स्वस्थ करने की बात आती है तो वो चीजें दिखाई पड़ती हैं कि कहीं किसी को इंजरीज हुई है या कहीं चोट लगी है, वो तुरंत दिख जाता है और लोग उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। पर बात की जाए अगर मानसिक स्वास्थ्य की, हम अपने मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये कभी ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है क्योंकि उसमें चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। हमें लगता है कि आज नहीं कल ये चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे विश्व मस्तिष्क दिवस पर, क्योंकि प्रतिवर्ष 22 जुलाई को हमारा वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। और आज का जो हमारा विषय है वो है डिजिटल डिटॉक्स और मेंटल हेल्थ, कि हम आज के इस आधुनिक युग में अपनी दिनचर्या को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे जो मस्तिष्क से होने वाली जो बीमारियां हैं कैसे वो हमें अफेक्ट करती हैं। इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर दिनकर कुशेश जी, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद देवाशीष जी, सभी श्रोतागणों को मेरा हार्दिक प्रणाम।
1: तो सर, जैसे कि आज का हमारा जो आधुनिक युग है बहुत ही बिजी लाइफ स्टाइल है लोगों की, लोग घंटों घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। इवन वयस्क के साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, वो भी आजकल बहुत हद तक अपना जो समय है वो स्क्रीन टाइम पर बिता रहे हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आता है, तनाव है, डिप्रेशन है या कुछ बीमारियां डेवलप हो जाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी देवाशीष जी, आजकल का वक्त जहां इंसान अपने में ही सीमित रह गया है, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर की दुनिया में, ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स एक ये नया शब्द है। तो डिटॉक्स, जैसे लोग डाइटिंग करते हैं तो एक दिन का डिटॉक्स करते हैं जिसमें वो आहार अपना कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही डिजिटल डिटॉक्स हमारे अंदर से चाहत है कि हम एक दिन या कुछ समय के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन से अपने आप को दूर रखें। डिटॉक्स का बेसिक फायदा क्या है? हम लोग अपनी मानसिक शैली को, मानसिक स्वस्थता को हमें और मजबूत करना है। आज के दौर में आप देखिए, जहां भी बच्चे किसी समूह में भी होते हैं तो अपना मोबाइल पकड़ के मोबाइल की दुनिया में ही रहते हैं। ये आभासी दुनिया रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है और इसी आभासी दुनिया में रहते हुए बच्चों की जो मानसिक डेवलपमेंट है उस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही वयस्क जो है, आप सोशल मीडिया पे किस प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट देख रहे हैं, उस कंटेंट से आपको क्या लाभ हो रहा है, एंटरटेनमेंट कितना है, उसका आपका एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जब इंसान इन सब चीजों को छोड़ के थ्रू आउट द डे डिजिटल वर्ल्ड में रहना चाहता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा हार्म होता है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने आप को नियमित रूप से डिजिटल वर्ल्ड को या डिजिटल जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको हम नियमित रूप से देखें, ताकि हमारी जो मानसिक, जिसको कहते हैं मेंटली, हम लोग और सक्रिय हो जाएं तनावग्रस्त जिंदगी को फेस करने के लिए। हम सामाजिक गतिविधियों में, समाज में क्या हो रहा है उसको हम एक अच्छे फीलिंग से महसूस करें, उसमें हम पार्टिसिपेट करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्थ की डेफिनेशन को ही ये डिस्क्राइब करता है कि हेल्थ केवल बीमारी या इंजरीज की कमी नहीं, हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, तभी हम हेल्दी कहलाते हैं। तो वर्ल्ड ब्रेन डे के अवसर पे हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि डिजिटल डिटॉक्स एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और सभी श्रोतागणों को इस पे जरूर अमल करना चाहिए। और अपनी जिंदगी में, क्योंकि स्मार्टफोन्स और इन सबकी जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए।
1: जहां तक बात की जाती है स्क्रीन टाइम की, जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। जो बच्चे आजकल चिड़चिड़े हो जा रहे हैं या कहा जाता है कि ऑटिज्म हो जा रहा है, उनको लगता है कहीं ना कहीं कि हमारा बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत देख रहा था तभी उसको ये दिक्कतें हुई। क्या कुछ ऐसा सही है कि स्क्रीन टाइम देखने से बच्चों को ऐसा होता है?
2: बिल्कुल देवाशीष जी, आप सही कह रहे हैं। जितना स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा, जितना आभासी दुनिया में बच्चे रहेंगे वो रियल वर्ल्ड से उतना ही दूर रहेंगे। यहाँ आपने ऑटिज्म की बात हुई कि ऑटिज्म एक तरह की डेवलपमेंटल बीमारी है जिसमें बच्चे जो है वो सोशली अलूफ हो जाते हैं और उनकी एक अपनी दुनिया होती है, अपनी दुनिया में रहते हैं। उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं कि हम वार्ता कैसे करते हैं, वो सब ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बीमारियों में देखने को मिलता है। तो इसी के अंतर्गत जब बच्चे स्क्रीन टाइम में अपने आप को बिजी कर लेते हैं, केवल ऑटिज्म ही नहीं, इवन नॉर्मल बच्चे भी जब स्क्रीन टाइम में बिजी कर लेते हैं तो उनका चिड़चिड़ापन बढ़ने लग जाता है, एक तरीके की एडिक्शन हो जाती है। वो खाना तभी खाएंगे जब उनके सामने मोबाइल रहेगा, वो रात को सोने से पहले एक घंटे का स्क्रीन टाइम लेंगे, उनको सुबह उठते ही मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। तो इसका सारा जो प्रॉब्लम होती है वो ब्रेन के कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और उसके फंक्शन पे आती है। नींद की कमी होना, तनावग्रस्त जिंदगी रहना, हर वक्त ये सोचते रहना कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल देख लूंगा, बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि डेवलपिंग ब्रेन

0: है। तो ब्रेन में जितनी भी हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जितने भी कनेक्शंस बनने हैं, वो कनेक्शंस अगर स्वस्थ बनेंगे, अच्छे बनेंगे, तो वयस्क जीवन में, वृद्ध जीवन में जो इन बच्चों को तनावग्रस्त जिंदगी आगे झेलनी है, उस सबको फेस करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है।
1: जाने या अनजाने में हम कुछ मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, अगर बात की जाए डिमेंशिया की, पार्किंसन की, ब्रेन स्ट्रोक की, तो इन सब बीमारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जी, तो देवाशीष जी, ब्रेन डे पे हम ये भी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस होता है जिसको हम डीजेनरेटिव डिजीजेस कहते हैं। समय के साथ साथ ब्रेन जब सिकुड़ने लगता है, उसमें जो खामियां होती हैं, उन्हीं से ये बीमारियां आती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे कॉमन बीमारी होती है डिमेंशिया, जिसको आमतौर पर हम लोग कहते हैं भूलने की बीमारी, और दूसरी बीमारी होती है पार्किंसन रोग, जिसको कंपन रोग कहा जाता है। तो जो डिमेंशिया बीमारी है, इसके संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे कि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आज हम नॉर्मल थे, कल हम एकदम से हमें डिमेंशिया हो गया। नहीं, ये बीमारी धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ती है। बहुत श्रोताओं ने ऐसा देखा होगा कि 65-70-75 की उम्र पे आप लोगों ने या आपके पेरेंट्स में किसी ने आपको ऐसे कंप्लेन की होगी कि हम ये चीज वहां रख के भूल गए। तो ये जो भूलने की बीमारी है, ये ऐसे ही शुरू होती है, थोड़ा थोड़ा व्यवहार में चेंज होने लग जाता है। पहले मैं बहुत ज्यादा लोगों से बात करता था, धीरे धीरे मेरा मन हट गया, तो जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में सठियाना कहते हैं, तो शायद वो सठियाना नहीं है, शायद वो हमें एक इत्तला दी जा रही है कि नहीं, ये डिजेनरेटिव डिजीज है, ये डिमेंशिया की शुरुआत है। प्रॉब्लम इन बीमारियों के साथ ये है, जब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, एक इस स्टेज पे आ जाती हैं जब आपकी दिनशैली, आपके पेरेंट्स की दिनशैली आपको दिक्कत देने लग जाती है, हम उस समय पे किसी डॉक्टर को या न्यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखाते हैं, पर तब तक सिकुड़न इतनी ज्यादा हो चुकी है या सिम्टम्स इतने ज्यादा हो चुके होते हैं कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अगर किसी में हम लोगों को ये लगता है, खास करके बढ़ती उम्र पे चेंज व्यवहार में हो रहा है, पहले बहुत खुश रहते थे, अब दुखी रहते हैं, सडनली डिप्रेशन, लोग कहते हैं कि भाई वो रिटायर हो गए इसलिए डिप्रेस हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। सडनली ये डिप्रेशन आ जाना, सडनली व्यवहारिक गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ जाना, नींद में उठ के चलने लग जाना, कई बार ऐसा होता है कि पेशाब निकल गई रास्ते में, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो प्रोस्टेट की बीमारी होगी। इसी के साथ एक और रोग होता है जिसको कंपन रोग कहते हैं या पार्किंसन रोग होता है। तो पार्किंसन रोग के मेन लक्षण क्या है? धीमापन आना। तो इन रोगों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जब तक आपकी दिनशैली को प्रभावित नहीं कर रहे, तब तक तो ये रोग आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, पर जब इनसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होने लग जाती है, तब तक दिमाग में जो सिकुड़न होती है या दिमाग में जो केमिकल एबनॉर्मैलिटीज या दिक्कतें होती हैं, वो इतनी ज्यादा हो चुकी होती हैं कि दवा से हम लोग पूरे स्तर पे इस पे काबू नहीं पा सकते। तो इसलिए इन बीमारियों को लेके मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी हमें बढ़ती उम्र में कुछ भी ऐसे लक्षण दिखें, तो हमें किसी डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए।
1: कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बाहर निकलते हैं और सडन हमारा जो बीपी होता है वो शूट कर जाता है, या कुछ भी ऐसे कारण हो सकते हैं कि या हमें चोट लग गई, तो पता लगता है कि व्यक्ति को एक-एक चक्कर आया और गिर पड़ा वो। तो जैसे ब्रेन स्ट्रोक जैसी जो समस्याएं हैं, बीमारी हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: जी, आजकल इतनी सारी तनावग्रस्त जिंदगी, तो हमारी मेंटल हेल्थ प्रभावित है, उससे हम लोगों को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जो बीमारियां पहले हम बहुत रेयरली सुनते थे, वो आजकल इतनी कॉमन है, हर चौथे इंसान से, इवन यंग लोगों से आप पूछें तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, नींद की प्रॉब्लम, और इन्हीं के चलते एक्यूट स्ट्रोक। तो जब भी ये क्लॉटिंग या हेमरेज होगी, तो जिस हिस्से में ये क्लॉट हुआ है, वो हिस्सा एक तरह से अगर कहा जाए तो खत्म हो जाता है, और उसी वजह से जिसको हम फालिस कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं, जो समस्या उस हेमरेज या स्ट्रोक की वजह से आती है, वो पैरालिसिस या सडनली हमें एक तरफ का दिखना बंद हो गया, हमारी जबान चली गई, हम मूर्छित हो गए, हम अनकॉन्शियस हो गए, जो चीजें अचानक होती हैं, ये स्ट्रोक की तरफ दर्शाती हैं। तो स्ट्रोक पहचानने के लक्षण और बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि हर बीमारी में एक गोल्डन पीरियड होता है। तो हम लोग पिछले 10-15 साल से इसी तरह की जागरूकता, न्यूरोलॉजिकल बीमारी जिसको स्ट्रोक कहा जाता है, इसको फैलाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, और कुछ हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। आज मैं ये बताना चाहूंगा श्रोतागणों को कि 4.5 घंटे जब आपको ये वाला कोई भी सिम्टम आए, जिसमें आपका मुंह टेढ़ा हो रहा हो, जबान लड़खड़ा रही हो, एक तरफ का हाथ या पैर सुन्न पड़ रहा हो, कमजोर हो रहा हो, तो जिस वक्त ये घटना होती है, उस घटना से लेके 4.5 घंटे तक का पीरियड हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड होता है। जैसे 12 बजे मुझे सडनली लगा कि मेरी जबान लड़खड़ा रही है और मेरा दायां हाथ कमजोर हो गया, तो 12 बजे से लेके 4.5 बजे तक के बीच में ये गोल्डन पीरियड है। तुरंत आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत सीटी स्कैन करवाइए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, 4.5 घंटे के अंदर अगर हमने सीटी स्कैन कराया और कहीं ना कहीं हमें क्लॉटिंग दिखी, हमें हेमरेज नहीं दिखती है, तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको अगर हम जल्दी से जल्दी दे दें तो वो क्लॉट घुल सकता है, और हो सकता है कि हमारे जो लक्षण ज्यादा होने वाले थे वो कंट्रोल हो जाए, वो नियमित हो जाए। इसको थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। तो अगर आपको कभी भी इस तरह के लक्षण लगते हैं, तो 4.5 घंटे का जो गोल्डन पीरियड है, उसको हमेशा याद रखिए, जल्दी से जल्दी

0: पास के किसी डॉक्टर या न्यूरोफिजिशियन को दिखाइए, सीटी स्कैन कराइए और हो सकता है अगर आप टाइमली आ जाएं तो इलाज के जरिए आपका इलाज संभव हो।
1: तो नॉर्मल श्रोता को क्या करना चाहिए कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, साथ ही साथ जो दिक्कतें हैं हम लोग डिस्कस की उसमें भी कहीं ना कहीं उसको निजात मिल सके।
0: तो देवाशीष जी, इनसे बचने के जो सबसे जरूरी उपाय है वो है हमारे को अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो शारीरिक स्वास्थ्य तो हम लोग जिम जाते हैं, हम अपनी बॉडी को मजबूत करते हैं, हम आज इतना वजन उठा लेते हैं, वो तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की एक इंडिकेशन होता है। साथ के साथ मानसिक स्वास्थ्य हमें अच्छा रखना है। तनावग्रस्त जिंदगी में हम कितना तनाव अपने अंदर ले रहे हैं, तो इन सब से बचने के क्या तरीके हैं? मानसिक व्यायाम, जिसको हम लोग मेडिटेशन या योग कहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ऐसे तरीके जिससे हम लोग अपने ब्लड प्रेशर, अपने नब्ज को कंट्रोल करना सीखते हैं, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाती है। साथ के साथ आज के टाइम में हम लोग इतना सारा खाना ऑर्डर करते हैं जिसको जंक फूड कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वापस अपना जो पुराना स्टाइल था जिसको हम लोग एक बैलेंस्ड डाइट कहते थे, उसकी तरफ हमें वापस जाना पड़ेगा। फिर से हम लोग वहीं आएंगे जहां हमने शुरू किया था। हम लोगों को एक आभासी दुनिया से दूर रह के रियल वर्ल्ड दुनिया में आना है, आपस में वार्ता करनी है, दोस्त बनाने हैं, बातें करनी है, अपने अंदर ही सब कुछ लेके नहीं रखना, वो हमारी मेंटल टेंशन और मेंटल हेल्थ को बिगाड़ते हैं।
1: तो जैसे कि सर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में है और वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत से लोग आते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस प्रकार के मरीज आजकल आपकी ओपीडी में ज्यादा आ रहे हैं और कौन सी समस्याएं आजकल आम जन को हो रही हैं।
0: तो देवाशीष जी, जो हमारी ओपीडी में करीब 70-80% की, हमारी ही नहीं मेडिसिन विभाग की ओपीडी भी जिन मरीजों से ज्यादा रहती है, वो है हेडेक के मरीज और लो बैक के। तो सिर दर्द के इतने ज्यादा मरीज आते हैं और इसके साथ साथ पीठ में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पैरों में दर्द होना, तो कहीं ना कहीं जो हेडेक्स होते हैं, कॉमनेस्ट तरीके के हेडेक को माइग्रेन कहते हैं, पर सारे हेडेक्स माइग्रेन नहीं होते। इसी तरह जो बैकेक, कई बार वो बैकेक नस के दबाव की वजह से भी होता है। जो हमारी देह शैली है वो हमारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है या उसके कॉज का एक कारण बनती है। तो कई बार जो मानसिक तनाव या हमारी टेंशन है या नींद की कमी है, इन सब से आने वाली दिक्कतों में भी सिर दर्द या बैकेक हो जाता है और जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं और मरीज हमें ओपीडी में दिखाते हैं। आजकल इतने सारे सिटिंग जॉब्स हैं, फिर वही होता है, हम लोगों का खेलना कूदना कम हो गया है। इवन छोटे छोटे बच्चे भी, 10 साल 12 साल के बच्चे आते हैं ये तकलीफ लेके कि हमारे बैक में पेन हो रहा है, तो उसका भी यही कारण है जिसको हम सिडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। हम लोग लेजी हो गए हैं। आजकल मोबाइल और लैपटॉप पे जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो घंटों कुर्सी पे बैठ के अपना काम करते रहते हैं, जिसमें हम लोगों की जो पीठ की मसल्स होती हैं ये टाइट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और यही कारण बनता है बैकेक का। इसी की तरीके से जो सिरदर्द होता है ये भी कहीं ना कहीं टेंशन रिलेटेड हेडेक्स भी होते हैं। तो ये दो बेसिक बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ न्यूरोलॉजी या मेडिसिन में देखने को मिलती हैं और इनके उपाय भी कहीं ना कहीं हम दवाओं के साथ साथ अपने मरीजों को व्यायाम, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, इन सब का भी हम मरीजों को कहते हैं कि इनको भी आप दवाइयों के साथ फॉलो करिए, तो उसमें लाभ होना ज्यादा कॉमन होता है।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने डिस्कस किया कि डिमेंशिया, पार्किंसन, माइग्रेन, ADHD ऐसे जो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं और लोग इससे परेशान हो जा रहे हैं, और एक बार अगर ये दिक्कतें आपको हो जाती हैं तो फिर आपको जीवन भर आपको या तो डॉक्टर दिखाना पड़ता है या तो आपको फिजियोथेरेपी कराना पड़ता है या तो फिर आपको पेन किलर खाना पड़ता है। लेकिन जो लोग इससे ग्रसित नहीं है, तो आप अपने आपके जो एक लाइफस्टाइल है उसको सुधारिए, कम से कम वो ठीक तरीके से रह सके, कम से कम वो बीमार हो। और डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बात बताया कि जरूरी ये है कि हम अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर रखने के लिए हम मेडिटेशन भी करें, योग भी करें, लगातार एक ही पोजीशन में हम लोग अगर ना बैठे तो कहीं ना कहीं हम इन सब बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो सर आज आप हमारे कार्यक्रम में और कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो हमारा टॉपिक था डिजिटल डिटॉक्स और मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर आपने विस्तृत चर्चा की। और चूंकि आज हम बात कर रहे थे विश्व मस्तिष्क दिवस के ऊपर, आपने सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कार्यक्रम में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद देवाशीष जी।
2: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल डिटॉक्स और मेंटल हेल्थ, इस विषय पर डॉक्टर दिनकर कुलश्रेष्ठ से की गई देवाशीष की बातचीत। इसी के साथ स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव।
3: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ से रिले कार्यक्रम FM 103 पर। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से ही बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं वीरपाल सिंह व साथियों के गाए हुए इस लोक भजन के साथ।
4: माई के द्वारे ये की तिरिया बिसूरे आसुंगा नो भींगे।

0: डेंगू चिकन गुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: भैया कछु अनमने दिखा रहे, का बात है
3: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
2: है अपन को भैया पता नहीं है, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
3: हेलो किसान फोन इन जो का है भैया?
2: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
3: कैसे पाए समस्या को समाधान?
2: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और

0: फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
1: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
0: फोन नंबर है 0510-232-0068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अब ना होए हमारे किसान भैया परेशान।

बीना झावा साथियों की आवाज में आप अभी सुन रहे हैं ये साक्षरता गीत। खुशबू माटी के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राकेश जैन द्वारा गाया गया

गया ये वर्षा गीत अभी आप सुन रहे थे। खुशबू माटी के इस कार्यक्रम में आज आपने बीरपाल सिंह व साथियों, राकेश जैन और बीना झा व साथियों का गाए हुए लोकगीतों को सुना। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यही समाप्त हुआ। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं विजय सूरी की लिखी नाटिका जवाब दो मुझे।
1: कौन भाई? अरे कौन है?
2: गेट खोलो मुरलीधर।
1: हेडमास्टर साहब, ये आप हैं?
2: हाँ मुरली, गेट खोलो।
1: इतनी रात को आप कैसे चले आए सर?
2: बस चला ही आया मुरली।

0: मेरा कमरा खोल दो।
1: जी अच्छा, आप दफ्तर की तरफ चलो, हम गेट बंद करके आते हैं।
0: ठीक है।
1: ये आज रात के 2 बजे कैसे आ गए? हाँ हाँ, पिछले 15 दिन से टीचिंग स्टाफ हड़ताल पर है और इन 15 दिनों में हेडमास्टर साहब की सेहत इस कदर गिर गई है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। ओहो, कहाँ गई चाबी? हाँ हाँ, ये रही। अरे, ये हेडमास्टर साहब कहाँ चले गए? हेलो, वो तो क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं। चलो, आ जाएंगे कभी। पहले दफ्तर तो खोल दूं। ये लो, सिर्फ एक ही बल्ब काम कर रहा है। ट्यूब शायद खराब हो गई है। कोई बात नहीं, अगर जरूरत हुई तो हेडमास्टर साहब टेबल लैंप रोशन कर ले हैं। अगर हुक्म हो सर तो अपनी कोठरी से चाय का कप बना कर ले आऊं आपके लिए।
0: नहीं मुरली, जाओ अब तुम आराम करो।
1: अच्छा सर, और कौन चीज की जरूरत हो सर तो?
0: नहीं, बस तुम जाओ।
1: जी अच्छा।
0: सुनो मुरली।
1: हाँ सर।
0: ऐसा करो मुरली, सारे क्लासरूम खोल दो।
1: सारे क्लासरूम खोल सर ई बखत?
0: हाँ।
1: क्या हड़ताल खत्म हो गई सर? टीचर लोग काम पर वापस आ रहे हैं क्या?
0: सवाल नहीं मुरली, जो मैं कह रहा हूं वो करो।
1: जी जी अच्छा सर।
2: ये क्या पागलपन कर रहे हो विद्या प्रकाश?
0: पागलपन? कैसा पागलपन?
2: पागलपन नहीं तो और क्या है? रात के 2 बजे स्कूल में आना, क्लासरूम खुलवा देना, आखिर क्या है तुम्हारे मन में?
0: तुम तो जानते हो मेरे मन की बात। क्यों तुम हंस क्यों रहे हो? पर नहीं, तुम्हारी हंसी के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है। आंसुओं को पीकर तुम हंसने की कोशिश कर रहे हो।
2: तुमने मुझे और अपने आप को इतना गड़बड़ कर दिया है कि मैं चाहते हुए भी तुमसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन एक बात कहूं विद्या प्रकाश?
0: बोलो।
2: तुम्हारे जैसे लोगों का आज के जमाने में कोई स्थान नहीं है। सच्चाई, उसूल, त्याग, ये सब शब्द आज के दौर में बेमानी हो चुके हैं। अगर आज के समाज में जीना चाहते हो विद्या प्रकाश, तो दूसरों के साथ कदम मिलाकर चलो।
0: तुम भी अजीब हो दोस्त, कभी तुम मुझमें मिलकर मेरे जैसे हो जाते हो और कभी हल्की सी चोट से घबरा जाते हो। सच्चाई आज भी जिंदा है, उसूलों की आज भी कद्र की जाती है, त्याग को आज भी महानता हासिल है।
2: कितने लोग मानते हैं इन बातों को? किसी ने कान धरा था तुम्हारी बातों पर? तुम्हारा हर शब्द, हर दलील बेअसर साबित हुई थी।
0: आग एकदम नहीं भड़कती दोस्त, चिंगारी से शोला और शोले से ज्वाला बनती है। मैं ये नहीं मान सकता कि सच की चिंगारी किसी के भी मन में न सुलग रही हो।
2: 20 आदमियों का टीचिंग स्टाफ है तुम्हारा, क्या किसी एक मन में भी वैसी चिंगारी को फूटते, जन्म लेते महसूस किया है तुमने?
0: हाँ, शायद एक था।
2: कौन?
0: तुम्हें ध्यान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं उस रोज जब वो सब हड़ताल का फैसला करके मेरे दफ्तर में आए थे, वो अपनी बात कह रहे थे और मैं
3: मैनेजमेंट को फायदा है।
4: हमारी बात को सुनता ही नहीं।
5: हड़ताल ही एक रास्ता है।
4: हम भी आपके साथ हड़ताल
5: करेंगे। हड़ताल करेंगे हम लोग।
0: सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आप सबसे उम्र में बड़ा हूं और स्कूल का हेडमास्टर हूं। मेरी आपसे विनती है कि पहले आप ठंडे

0: दिल से मेरी बात सुन ले।
1: बोलिए बोलिए ना सर, हम तो सब आपकी दिल से इज्जत करते हैं सर।
0: दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपकी मांगे जायज नहीं। आप जो भी मैनेजमेंट से मांग रहे हैं वो आपका हक है और आपको मिलना ही चाहिए। लेकिन लेकिन दोस्तों, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो रास्ता आप चुन रहे हैं वो गलत है।
1: गलत क्यों है सर? आज तो ये रिवाज सा बन गया है कि जब तक हड़ताल न करो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी और न ही आपकी मांगों को माना जाएगा।
2: मैनेजमेंट हमें मजबूर कर रहा है कि हम हड़ताल करें।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, आप सब सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि विद्या का प्रकाश फैलाने वाले हैं। आने वाली नस्लों को बिगाड़ना या बनाना आपके हाथ में है। जिन किताबों को पढ़कर आप इस काबिल हुए हैं, उन किताबों और उनके ज्ञान को अमर बनाना या फिर उन्हें कफन ओढ़ाकर दफन कर देना आपके हाथ में है।
1: आपकी बात कुछ साफ नहीं है सर।
0: बात बिल्कुल साफ है मिस्टर शर्मा। वो बच्चे जिन्हें आप पढ़ाते हैं, अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं, अनुशासन का उपदेश देते हैं, वो बच्चे
1: मगर हमारी मांगों और स्ट्राइक पर जाने के फैसले का बच्चों के भविष्य से क्या ताल्लुक है सर?
0: बहुत बड़ा ताल्लुक है शर्मा जी, बहुत बड़ा ताल्लुक है। आज ये बच्चे देखेंगे और महसूस करेंगे कि उनके टीचर किसी बात को मनवाने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, अपना काम बंद कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं, तो कल वो भी हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे।
1: आप तो बात का बतंगा बना रहे हैं सर।
0: मिस्टर गुप्ता, कल जब आपका कोई स्टूडेंट किसी बस को जलाएगा, किसी रेल का पहिया जाम करेगा, तो वो उस किताब को जलाएगा जो आपने उसे पढ़ाई है, उस ज्ञान को बढ़ने से रोकेगा जो मानव कल्याण और उन्नति के लिए आपने उसे दिया है।
2: हमारे स्टूडेंट कल क्या करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं।
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल हैं।
2: वो किस तरह?
0: रेल, हवाई जहाज बनाने का ज्ञान आपने दिया, इंसान को मौत के मुंह से वापस ले जाने वाली दवाइयां बनाने का ज्ञान देने वाले भी आप हैं, सर्वनाश करने वाली नदियों पर बांध बांधने की शिक्षा आपने ही दी है, और अब आप ही हड़ताल, बंद और तोड़ फोड़ करने की गलत राहें दिखा रहे हैं।
1: ये सब ठीक है सर, लेकिन इन बातों से पेट नहीं भरता सर।
0: स्वार्थ, केवल अपना स्वार्थ और कुछ नहीं।
2: अजी, कौन नहीं सोचता अपने स्वार्थ के लिए?
0: सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उन जैसे हजारों लोग ये जानते हुए भी फांसी पर चढ़ गए कि आजादी का सूरज देखना उन्हें नसीब नहीं होगा, मगर उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी, और हम लोग क्या दे रहे हैं आने वाली नस्लों को?
1: भाई, ये सब कुछ तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए सर।
0: मैनेजमेंट क्या सोचती है ये दूसरा सवाल है, पहले आप बताइए आप क्या सोचते हैं। आप हड़ताल करेंगे, मैनेजमेंट का नुकसान होगा। चलो मान लो महीना 15 दिन की हड़ताल के बाद आपकी मांगों को मान भी लिया जाता है, मगर इस दौरान मासूम बच्चों की तालीम जो अधूरी रह जाएगी उसका क्या होगा?
1: आप पूरी दुनिया से अलग सोचते हैं सर। आज कौन हड़ताल नहीं करता? पुलिस से लेकर डॉक्टर तक, मिल वर्कर से लेकर इंजीनियर तक, सियासी पार्टियों से लेकर धार्मिक संस्थाओं तक, सभी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं। फिर आप हमें क्यों रोक रहे हैं?
2: ये हड़ताल होकर रहेगा।
1: हाँ, दोस्तों, जरूर जरूर होकर रहेगी, हड़ताल होकर रहेगी। कल से क्लासें बंद
2: बंद। चलो,
1: बिल्कुल बिल्कुल बंद।
2: चलो
1: चलो चलो, आओ भाइयों, चलो आओ, क्लासें बंद, बिल्कुल आओ, आओ भाइयों।
0: आप क्यों नहीं गए मिस्टर शर्मा?
1: सर, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, लेकिन
0: लेकिन लेकिन क्या मिस्टर शर्मा?
1: अगर मैं अपने साथियों का साथ न दूं सर, तो गद्दार कहलाऊंगा, मेरा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा सर। आई एम सॉरी सर, मैं चाहते हुए भी उनका साथ नहीं छोड़ सकता सर। नमस्ते।
0: तुम बड़े भोले हो विद्या प्रकाश। शर्मा दोहरी चाल चल गया।
3: दोहरी चाल?
0: हाँ, तुम्हारे विचारों से सहमति की बात करके तुम्हें खुश भी कर गया और हड़ताल में शामिल होकर अपने साथियों का वफादार भी बना रहा। तुम अकेले हो विद्या प्रकाश, बिल्कुल अकेले, कोई तुम्हारे साथ नहीं है।
3: ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अकेला हूं?
0: आदमी दुनिया को तो धोखा दे सकता है विद्या प्रकाश, लेकिन अपने आप को नहीं।
3: क्या मतलब है तुम्हारा?
0: किसी ने

0: भी तुम्हारा साथ नहीं दिया विद्या प्रकाश, यहां तक के प्रभा भी।
1: प्रभा?
0: हां प्रभा, तुम्हारी पत्नी। क्या कहा था उसने?
2: मैं कहती हूँ जब तुम्हारे स्कूल के मैनेजमेंट को ही कोई परवाह नहीं तो तुम्हें किस बात की चिंता है?
1: चिंता है प्रभा, मेरे स्कूल के वो मासूम बच्चे।
2: तुमने अपने स्कूल के बच्चों के अलावा कभी और ही कुछ सोचा है? तुम्हारे साथी ट्यूशन कर करके कारों फ्लैटों के मालिक बन गए, मगर तुम?
1: विद्या बेचने की नहीं प्रभा, दान करने की चीज है। आज तुम ये बहस क्यों लेकर बैठी हो प्रभा?
2: इसलिए कि तुम दूसरों के गम में अपनी जान हलकान कर रहे हो, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो?
1: दूसरा कौन है प्रभा? वो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो विद्या प्राप्ति के लिए वहां आते हैं प्रभा, वो तो भगवान का रूप होते हैं।
2: तो करते रहो उन भगवानों की पूजा, अकेले ही पढ़ा लो उन सबको तुम।
1: कोई मेरे मन की बात नहीं समझता, तुम भी नहीं प्रभा, तुम भी नहीं।
0: सच कह रहे हो विद्या प्रकाश, कोई भी तुम्हारे मन की बात नहीं समझता, इसीलिए तो मैंने कहा ना, तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले।
1: मैं ही गलत हूं? बोलो, जवाब दो। अब चुप क्यों हो गए हो? बताओ, क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो कुदरत के बनाए हुए उसूल गलत है। कभी सूरज को हड़ताल पर जाते देखा है तुमने? कभी हवा ने बंद का आह्वान किया है? कभी धरती ने अपनी गर्दिश को टोका है? रुक जाने का नाम जीवन नहीं, मौत है मौत। बोलो, आज का इंसान मौत का पुजारी क्यों बन रहा है? मशीनों की मौत, जान की मौत, किताबों की मौत, मानवता की मौत। बोलो बोलो, जवाब दो, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कहां चले गए हो तुम? बोलो ना, जवाब दो, मुझे जवाब दो, जवाब दो मुझे। गलत कौन है? खामोश क्यों हो तुम?
3: हेडमास्टर साहब,
1: किताबों को कफन उड़ा दिया जाए, मशीनों को आग लगा दी जाए। बोलो
3: हेडमास्टर साहब,
1: बोलो जवाब दो।
3: ये आप किससे बात कर रहे हैं?
1: क्यों नहीं हो तुम? क्या रुक जाने का नाम जीवन है? बोलो।
3: अरे पर मेरा गिरेबान तो छोड़िए सर, मेरा गिरेबान तो छोड़िए सर।
1: पहले मुझे जवाब दो, जवाब दो मुझे, मुझे जवाब चाहिए। कुदरत गलत है, कुदरत गलत है।
3: अरे तो बेहोश हो गए। पानी? हाँ पानी लाता हूँ, पानी लाता हूँ।
1: जवाब तो मुझे, जवाब तो।
4: तो ये थी नाटिका हवा महल में आज, जवाब दो मुझे। इसे लिखा विजय सूरी ने, निर्देशन किया अचला नागर ने। विविध भारती की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।
5: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
6: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
5: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
7: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
5: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
8: तुम्हारी याद सताते हैं
5: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से फिल्म संगीत, जिसका आज का शीर्षक है एक कलाकार, और इस शीर्षक के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं गायक यशुदास के गाए हुए कुछ चुनिंदा नगमे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं यशुदास का गाया हुआ फिल्म हैसियत से ये नगमा।

0: यशुदास का गाया हुआ एक और गीत आप सुन रहे हैं, फिल्म मान अभिमान से। संगीत रविंद्र जैन का है और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय।

सेना जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

जयदेव के संगीत निर्देशन में अभी आपने फिल्म आलाप से ये गीत सुना। गायक स्वर था यशुदास का। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम शीर्षक एक कलाकार के अंतर्गत गायक यशुदास के गाए हुए कुछ गीत। और आइए अब सुनते हैं इन्हीं की आवाज में फिल्म स्वामी का ये गाना, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत एक कलाकार शीर्षक में यशोदास के गाए हुए कुछ चुनिंदा गीत। इस कार्यक्रम में आज आपने स्वामी चित्चोर, आलाप, मान अभिमान, हैसियत और साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं। इन गीतों को सुना। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। श्रोताओ, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमरीका

व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनके बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया।
उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेस

0: दिल्ली से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध IED विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है।

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and 4 others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading.

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है शकील बदायूनी। संगीत है रवि का। फिल्म का नाम है घूंघट।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अगली पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है उड़न खटोला।
3: चले आज तुम जहां से, तुम्हें मिल गया ठिकाना।

0: भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती के कार्यक्रम श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से FM 103 पर। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब समय हो चला है फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। हेलो झांसी, श्रोता प्रस्तुत है ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं प्रीति सक्सेना और प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी।

0: नमस्कार मैम, कैसी हैं आप?
1: मौसम कैसा है वहाँ पे?
0: यहाँ मैडम अभी धूप निकला हुआ है और अभी एक दो दिन पहले यहाँ बारिश भी हुई हमारे प्रयागराज में जी। थोड़ा मौसम से राहत मिली है गर्मी से जी। आपकी तरफ से कैसा मौसम है?
1: यहाँ पे भी बढ़िया है, बारिश ने धूम मचाई हुई है। बारिश की अपनी कोई यादें साझा करना चाहे तो कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ। कभी तो बारिश में भीगे होंगे, कुछ यादें होंगी बचपन की, बड़े होने के बाद की।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, पहले क्या होता था कि हम लोग बचपन में जब कहीं भी जब बारिश आती थी ना, तो हम लोग बहुत से ऐसे कागज के जो कहते हैं कि जो नाए वगैरह होते हैं ना
1: जी जी,
0: हम लोग बनाते थे मैम। और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता था। और जब भी कभी बारिश होती थी तो हम लोग बहुत से ऐसे लोग होते थे, बारिश में अक्सर हम लोग भीगा करते थे उस नाए के साथ में, और खेलने में उसको बहुत अच्छा लगता था।
1: बिल्कुल, वो दिन इतने खूबसूरत होते थे। तो कागज की कश्ती से ट्रक तक का सफर खुशियों भरा रहा ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा था मैम।
1: चलिए तो बताइए, गीतों के सफर में आज फरमाइश कौन सी है आपकी?
0: फिल्म का नाम है फिजा
1: जी,
0: और इसके गाने का बोल है इश्क है तो इश्क का इजहार कर।
1: कुल आपकी पसंद पे सुनवाते हैं हम आपको फिजा फिल्म का ये गीत।

0: बिल्कुल, बारिश के मौसम में यही होता है। जब चारों ओर हरियाली होती है, मिट्टी की सौंधी खुशबू, रंग बिरंगी तितलियाँ खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। जब हमारे श्रोताओं का कॉल, उनकी बातचीत इसमें शामिल हो जाती है तो कार्यक्रम की शान और बढ़ जाती है, जिसका नाम है हेलो झांसी। तो आज की बारिश की यादों का सफर करते हैं शुरू और लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो झांसी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएंगे प्लीज।
1: मैं विकास बोल रहा हूँ, दादनपुर प्रयागराज से।
0: जी जी
1: ट्रक ड्राइवर, नमस्कार।

0: आकाशवाणी के फोनिंग कार्यक्रम हेलो झांसी में आपका स्वागत है।
1: हाँ हेलो मैडम जी, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी, कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: मैं रमेश चंद्र जसौलिया बोल रहा हूँ, ग्राम जरियाई चिरगांव के पास है, जिला झांसी से।
0: जी रमेश जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मतलब मैं जो असहाय होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी मैं सरकारी काम कराने में उनकी मदद करता हूँ सर, यही मैं काम करता हूँ।
0: तो ये तो आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, इसके लिए तो मतलब आपको जितना धन्यवाद।

0: हम लोग भी कहें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके के कामों में अपना सहयोग देते हैं।
1: और एक बात मैं और बता दूं आपको
0: जी,
1: जब आपका ये फोन कार्यक्रम शुरू हुआ था
0: हाँ जी,
1: तो पहला कॉल मेरा ही लगा था सर।
0: अरे क्या बात है, तो फिर तो आप हमारे पहले श्रोता हुए हेलो झांसी के, और हमारे नियमित श्रोता भी हैं, तो आपके लिए तो खास धन्यवाद बनता है हमारी तरफ से।
1: ये मेरा उस वक्त से अब चौथा कॉल लगा चौथा कॉल ठीक हुआ है
0: जी। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: मैं अपनी पत्नी का नाम और नाती का नाम दे सकता हूँ?
0: बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते
1: सर। मेरी पत्नी का नाम है श्रीमती सीता रानी जसौरिया और मेरे नाती का नाम है बास्ती। तो मुझे गाना सुनना है जीवन में प्रिया तेरा साथ रहे। अनिरुद्ध सनाई का गाना है, भरत व्यास ने लिखा है, बसंत देसाई का संगीत है, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने इसको गाया है सर।
0: बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी बात आपकी अच्छी लगी कि आप गीत की फरमाइश के साथ उसकी जानकारी भी रखते हैं, ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि बारिश की यादों की, तो आपके पास कोई बारिश की ऐसी याद है इस जीवन काल की जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे?
1: हाँ सर, मैं जब पढ़ता था 1987 में बीए फाइनल कर रहा था, उस वक्त मैं यहाँ से दिल्ली जाया करता था बस से, तो हुआ यो के सब परीक्षा हो रही थी मेरी, बरसात काफी हो गई सर, वहाँ से मैं आते आते 8 बज गया सर। तो सर मेरे यहाँ एक नहर पड़ती है सर परीक्षा वाली।
0: अच्छा,
1: तो सर वो बहुत आधी चढ़ आई। अब मैं सर इधर जाऊँ तो इधर 2 किलोमीटर पुल, इस तरफ को जाऊँ तो इधर 2 किलोमीटर पुल। तो सर रात को मैं 9 बजे नहर में कूद ही गया सर।
0: अरे,
1: और सर मैं हिम्मत करके जब मैं इस तरफ आया तो सर मैं एकदम से मेरा दिल जो है घबरा गया, मैंने कि मैंने ये क्या कर दिया था, लेकिन वो भगवान का शुक्र मानो कि मैं पार हो गया। और जबकि उसमें पानी सर चलता है 63 फुट।
0: तो ये आपके अच्छे कर्म और आपके परिवार की अच्छी किस्मत थी।
1: बस यही मेरी एक याद है कि मैं अपनी गलती में एक बार कर चुका, अब मैं जीवन में कभी नहीं कर।
0: सबसे बड़ी बात कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और आपने उस नहर को ही पार नहीं किया, अपने जीवन को भी बहुत अच्छे से पार किया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी याद को आपने साझा किया कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना शुभ नाम बताइए।
1: मेरा नाम नितेश आर्या है।
0: नितेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: प्रयागराज।
0: प्रयागराज, धार्मिक नगरी
1: जी। कभी आइए घूमने।
0: जी बिल्कुल, जरूर आएंगे। बताइए कैसा मौसम है?
1: इस समय तो हल्की धूप निकली हुई है, आपकी तरफ कैसा मौसम है?
0: बहुत खुशनुमा मौसम है, हल्की हल्की
1: बारिश हो रही है।
0: बारिश भी हो रही है, कभी धूप भी आ रही है, धूप छांव का खेल चल रहा है बारिश के साथ।
1: जी कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक है, आप सबका प्यार और आशीर्वाद है। बताइए, बारिश की कोई पुरानी यादें हैं जो आपको आज भी मुस्कुराने पे मजबूर कर देती हो? ऐसी कुछ याद है बचपन की?
1: जी जी, ऐसी तो बहुत यादें हैं, पर अगर हम बताने प्रोग्राम शायद ये जो हमारा हेलो फोन इन फरमाइश है इसमें थोड़ा कम पड़ गया। बचपन में तो हम उसे बहुत सी यादें हैं, और जो जिसे हम पहले नाव चलाते हैं कागज की बनाकर, ये सब तो बहुत यादें हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो दिन कभी लौट के नहीं आते, लेकिन खूबसूरत यादें दे जाते हैं।
1: जी जी, वो बस एक याद रह जाती जब अपने घर वालों के साथ बैठते हैं तो बस वो याद आती है।
0: और जब आज हम अपनी पीढ़ी को उन यादों के साथ साझा करते हैं तो और ज्यादा माहौल अच्छा हो जाता है, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा बनता है ना?
1: जी जी, और दोस्तों के साथ जब बैठ कर बातें होती है बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, यही तो है कि हम जब भी बैठे तो अच्छी यादों को साझा करें और आगे के लिए अच्छी यादें बनाए।
1: जी जी, और रेडियो भी बहुत अच्छा लगता है सुनकर।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: ये फोन इन कार्यक्रम बहुत पसंद आता है आपके केंद्र से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: अभी आपने बारिश की बात किया तो मुझे इस पे एक गाना याद आया, आज फिल्म का नाम है
0: जी,
1: जगजीत जी ने गाया है, दौलत भी लो शोहरत भी ले लो।
0: बिल्कुल, बहुत मतलब आपने अपने बचपन को याद कर ही लिया।
1: जी जी, क्योंकि अब दौलत कुछ भी देने पर वो वापस नहीं आ सकता।
0: ये सच बात है, दुनिया की दौलत बचपन के आगे फीकी पड़ जाती है।
1: जी जी, बस जो वक्त होता है उसको जी लिया बहुत है।
0: जो वक्त जिया बहुत अच्छा था, आगे भी जो वक्त हम जिएंगे वो बहुत अच्छा हो, यही हम सबकी कोशिश और कामनाएं हैं। कार्यक्रम में फोन करना।

0: आकाशवाणी झांसी के फोनिंग कार्यक्रम हेलो झांसी में आपका स्वागत है।
1: मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। मैडम
0: नमस्कार। इंद्रभान जी कैसे हैं?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। आज ड्यूटी नहीं है, घर पे हूँ। कहीं तो काम कर रहा था, कुछ जगह फोन लगा, कुछ जगह लाइफ में लगा, बातचीत हो रहा था। अभी मैं सोया था मैडम, थोड़ा सा तबीयत मेरा थोड़ा सा खराब लग रहा था, बस सर भारी भारी।
0: ये मौसम आजकल गड़बड़ चल रहा है ना, इसलिए सभी की तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है।
1: थकावट के चलते नींद नहीं लगा था, तो थोड़ा सा नींद लग गया सर, तो वही उसके बाद उठा, इसके बाद फिर आपके केंद्र में फोन किया।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया। कोई बारिश की याद है जो जीवन काल की, जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे?
1: जी मैडम, उसकी याद है। उस समय मैं गांव जा रहा था तो खूब पानी आया मैडम, और उस समय उसमें बिजली चमक हो रहा था और एकदम पैदल जा रहा था। तीन कोस में गाँव जाना था, जो गरज नहीं जो गाज मार रहा था मैडम।
0: जी जी जी, बादल जो गरजता है बिजली के साथ।
1: बताइए, तीन को जा रहा था और खेती खेत जा रहा था, गाज मार रहा था, खूब पानी गिर रहा था।
0: अरे
1: लेकिन भगवान की किस्मत देखिए, मेरे पर कुछ नहीं हुआ।
0: ये बहुत अच्छी बात है।
1: बहुत पहले की बात है, उसमें मैं लगता नौवीं पढ़ता था, आठवीं नौवीं।
0: ओहो
1: जी,
0: चलिए तो। लेकिन तब से फिर आपने रात में निकलना बंद कर दिया होगा, एक सीख मिल जाती है ना हमें।
1: जी मैडम, और वहाँ पर झरना था और वैसे पहाड़ को पार करना था और किनारे किनारे रास्ता था और उधर किनारे तक वो जो कटाव टाइप का रास्ता था, किनारे से पानी निकल जाता था और इधर से निकल गया था, धीरे करते करते पैदल निकल गया था, एक समय चप्पल बह गया था।
0: चलिए तो मतलब कुछ यादें जहाँ हमें मुस्कुराने पे मजबूर करती हैं, कुछ यादें हमें डरा भी देती हैं और कुछ सीख भी दी जाती है ना।
1: जी मैडम।
0: चलिए आपकी इस याद के संग बहुत अच्छा लगा। गीत की फरमाइश बताइए, कौन सी सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है जख्मी, सुनील दत्त जी का फिल्म का गाना है। जलता है जिया मेरी भीगी भीगी रातों में, आज गोरी चोरी चोरी अब तो रहा न जाए रे, गायक किशोर कुमार आशा भोसले। ये गीत है मैडम। सबसे पहले गीत आपको, केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी झांसी में जुड़े सभी लोगों को, आकाशवाणी झांसी में सभी घोषक भाई बहनों का स्टाफ कर्मचारी को, हेलो रेडियो और पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को डिलीट है।
0: और अब इस गीत का आनंद लीजिए जो आपकी फरमाइश पे हम सुनवा रहे हैं आपको। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो झांसी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ
1: हेलो हेलो झांसी।
0: जी बिल्कुल, आपने हेलो झांसी में फोन किया है। कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: मैं छतरपुर से एमपी से बोल रहा हूँ, घनश्याम रजरिया।
0: बताइए कैसा मौसम है वहाँ पे?
1: मौसम ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले बारिश हो रही थी, तो 1-2 दिन से थोड़ा ही रुकी हुई है।
0: तो बारिश की कुछ याद है जो आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे?
1: हाँ यार, बारिश से ही संबंधित गीत दे रहे हैं आपको, है ना? तो हम वैसे तो मूलतः झांसी के रहने वाले हैं।
0: अरे वाह।
1: लेकिन यहाँ 90 से छतरपुर में है, बैंक में सर्विस करते थे, तो अभी 2018 रिटायर्ड हुए, पर यही सेटल हो गए। तो लेकिन झांसी से लगाव है, किराए नगर जाती है, आना जाना
0: तो
1: होता है।
0: झांसी की कोई बारिश की अगर आपके पास याद हो तो वो साझा कीजिए हमारे साथ, बहुत अच्छा लगेगा हमें सुन के।
1: बारिश तो हमने अपने समय में बचपन में बारिश इतनी ज्यादा होती थी कि एक एक हफ्ते तक जो है वो झिरे लगी रहती थी। लोग बाग साग सब्जी लेने के लिए जाने के लिए भी परेशान रहते थे, और वो बड़े वाले छाता चलते थे, तो उसमें दो दो तीन तीन लोग जो है एक साथ जाते थे मार्केट के लिए। मैं ऐसे मेरी 70 वर्ष का मैं हो गया हूँ, और रेडियो से तो बहुत बचपन से ही जुड़े हैं, समझो कम से कम 1963 से तो रेडियो सुन ही रहे बचपन से, जब लोग वहाँ स्टैंड पर अपने साथ ही रखते थे, रात में अपनी चारपाई पे रखते थे, सुबह से घूमने जाते थे तो लेके चलते थे।
0: हाँ जी, एक हर पल का साथी हुआ करता था ना हमेशा से।
1: जी, हाँ रेडियो तो बहुत बड़ा साथी है जीवन के लिए, और उससे हर प्रकार का ज्ञान मिलता है, सामाजिक राजनीतिक बौद्धिक धार्मिक, और रेडियो ही मैं ज्यादा सुनता हूँ, शुरू से रेडियो सुनने का। अभी भी हमारे पास 2 रेडियो हैं। और आपको जो है बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं स्थापना दिवस की।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे श्रोताओं से ही चल रहा है ये कार्यक्रम,
1: इसी तरह हमारी आकाशवाणी जो है तरक्की करे, जनप्रतिनिधि उन्नति करे, और हम तो सुनते रहते हैं। अभी हमने फोन जरूर 5-6 महीने में लगाया, काफी दिन बाद लगाया, लेकिन हम सुनते जरूर हैं दोनों प्रोग्राम हफ्ता के, और बड़ा अच्छा लगता है, उसमें बहुत दूर दूर से लोग बाग जुड़े हैं।
0: जी
1: है,
0: हमारा परिवार बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: महाराष्ट्र से, कश्मीर से, शिमला से, मतलब हर साइड से आदमी जुड़ रहे हैं।
0: जी,
1: तो इसलिए हमने फोन कम लगाया अभी, कि और लोगों को मौका मिले।
0: यही जागरूक श्रोताओं की यही पहचान होती है कि हम जुड़े भी हैं और दूसरों को मौका भी दे रहे हैं। ये आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी।
1: तो हम पुराने मुकेश जी के और रफी और किशोर कुमार के गाने ज्यादा सुनते हैं, तो आज आपको हम मुकेश जी की आवाज में ही गाना दे रहे।
0: बताइए।
1: ये फिल्म है 1973 की, सबक।
0: सबक जी,
1: सबक फिल्म है, इसमें गाना है बरसा रानी जरा झूम के बरसो, मेरा दिल न पाए झूम के बरसो, है ना?
0: बहुत प्यारा गाना है, बहुत अच्छा लगा। आपकी इतनी अच्छी जानकारी, शुभकामनाएं, यादें और ये वर्षा से जुड़ा हुआ गीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, हेलो झांसी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हाँ जी, मैं रवि प्रकाश, ग्राम बिजौली झांसी से।
0: बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका कार्यक्रम में
1: जी। और मैं देवेश भारती का नियमित श्रोता हूँ, बहुत पुराना। और
0: बहुत अच्छा लगता है जान के जब हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं सालों से हमारे साथ। हमारे केंद्र के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: हाँ, शाम के भी प्रोग्राम सुनता हूँ, रात का भी सुनता हूँ मैं 10:30 बजे तक। और दिन भर चलता रहता, अपना काम करते रहते हैं और सुनते रहते हैं।
0: क्या करते हैं?
1: मेरा साइकिल रिपेयरिंग का काम है।
0: फिर तो गीत और रेडियो का बराबर का साथ है आपका।
1: हाँ, बराबर का साथ है, अपना काम आया है, काम करते रहे, अपना चल रहा है, प्रोग्राम सुनते रहती।
0: ऐसे में काम करने में मजा भी बहुत आता है ना?
1: हाँ, टाइम पास होता रहता, मन लगा रहता है।
0: बिल्कुल। और बताइए, बारिश की कोई याद है जो हमारे साथ साझा करना चाहेंगे?
1: बारिश के लिए तो क्या, इस बार बता दिया मौसम ने, वैसे ही लेट आई थी और बस अब तो फुहार सी लेके चल रहा था, इसमें उमस और ज्यादा बढ़ रही है, तकलीफ ज्यादा हो रही है इसमें। तो बस बड़े बड़े बादल देखते रहता हूँ, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा, तो सब धोखा देके चल रहा था। हमने कहा हमारे जमाने में तो ऐसी बारिश हुआ करती थी कि एक एक हफ्ते पूरा गैप ही नहीं होता था, बिल्कुल कंटिन्यूस चलती रहती थी। लेकिन हम ठीक है जी,
0: सच बात है।
1: बता दीजिए,
0: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गाने के बोल थोड़ा सा गुनगुना के बता दूं, फिल्म का नाम?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप गुनगुना के बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: बरखा रानी जरा बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए, जो मुझे बरसो। इस पिक्चर का नाम याद नहीं आया।
0: सबक फिल्म का ये गीत है।
1: जी हाँ, सबक का। हाँ, बहुत अच्छा होता है सबक का है। ठीक ठीक। हाँ
0: तो बिल्कुल आपकी फरमाइश पे सुनवाते हैं हम आपको वर्षा से जुड़ा हुआ ये गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हेलो झांसी फोन इन फरमाइशी ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से चित्रपट संगीत।

किशोर कुमार का गाया हुआ फिल्म बातों बातों में ये गीत आप सुन रहे थे। अमित खन्ना के लिखे बोल थे, राजेश रोशन की बनाई हुई धुन।

आनंद बख्शी के लिखे हुए इस गीत की धुन बनाई आर डी वर्मन ने, आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कटी पतंग। और लीजिए अब सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज को फिल्म पेंटर बाबू से। मनोज कुमार के लिखे हुए बोल है, धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से चित्रपट संगीत, और आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म आदमी से।

0: लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सिलसिला का ये गाना आप सुन रहे थे। शिवहरि का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। और श्रोताओ लीजिए, अब चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को हमने लिया है फिल्म शालीमार से, आवाज किशोर कुमार की है।
1: कुमार, तुम्हारा कोई कैरेक्टर है ना ईमान ना वफादारी।

किशोर कुमार के गाए फिल्म शालीमार के इस गीत के साथ ही श्रोताओं चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं मास्टर मदन की गाई हुई ये गजल।

जगजीत सिंह को अभी आप सुन रहे थे इस गजल के साथ। और लीजिए कार्यक्रम का ये अगला कलाम परवेज मेहंदी की आवाज में।

सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। कार्यक्रम की ये गजल भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

श्रोताओ, इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।

0: फिलहाल अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव

0: बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods, and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. Social media post, the President said her thoughts and prayers are with the affected families, expressing condolences to the bereaved families.